मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की

0: शिक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशन की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का विचार। विषय है जीवन का स्रोत जीवन। आलेख और वाचक स्वर प्रमोद कुमार शर्मा का है।
3: जीवन का स्रोत जीवन है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक प्रातःकालीन भ्रमण में अपने शिष्यों को ये समझा रहे हैं कि जीवन ही जीवन का स्रोत है। वे कहते हैं, वैज्ञानिक ऐसा विश्वास क्यों करते हैं कि चंद्रमा पर जीवन विद्यमान नहीं या वहाँ पर जीवन नहीं है? चंद्रमा ग्रह धूल से ढका हुआ है, किंतु उस धूल के अंदर भी जीवधारी रह सकते हैं। जीवन के लिए प्रत्येक वातावरण अनुकूल है, कोई भी वातावरण। इसलिए वेद जीवधारियों को सर्वगता के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका अर्थ होता है सभी परिस्थितियों में अस्तित्व रखने वाला। जीव पदार्थ नहीं है, यद्यपि वह भौतिक शरीर रूपी पिंजरे में बंद है, फिर भी वो पदार्थ नहीं है। किंतु जब हम लोग विभिन्न वातावरणों की बातें करते हैं तो हमारा संकेत पदार्थों की विविध भौतिक दशाओं की तरफ होता है। श्रोताओ, प्रभुपाद जी का ये वचन हमें आश्वस्त करता है कि जीवन सदैव और हर कहीं मौजूद है, और जीवन ही जीवन का स्रोत है। वह जब जीवन के सर्वगत होने की घोषणा करते हैं तो एक तात्पर्य है, एक दृष्टि है, यानी जीवन है और वो अस्तित्वगत है। अस्तित्व अनंत है तो जीवन भी अनंत है, वो कभी मिटता नहीं। इसलिए जीवन की रक्षा जीवन से ही संभव है, औषधियों से नहीं।

0: एक बार एक आश्रम में कहीं दूर से चलकर साधु महाराज आए और विश्राम कर रहे थे। वे बीमार थे। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। मैंने पूछा, महाराज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या दवाई ले रहे हैं आप? तो साधु बाबा अपने पास खड़े भक्तों को देखकर बोले कि भाई, मानस यानी मनुष्य ही ले रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य की औषधि है। हम लगातार टॉर्चर करने पर किसी को बीमार कर सकते हैं, तो लगातार सेवा टहल से ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन को जीवन का शत्रु मत बनाइए, जीवन को आतंकित मत कीजिए। यह जीवन रस से पूर्ण है, क्योंकि परमात्मा भी रस स्वरूप है। कहा गया है, रसो वैसे, वह परमात्मा रस स्वरूप है और जीवन भी रसपूर्ण है। तो वह रस कहाँ खो जाता है जब हम आपदाओं, छल कपट, हारी बीमारी के शिकार होते हैं। आज आवश्यकता है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध मधुर बने और एक सामाजिक समरसता का बोध सबके भीतर अंकुरित हो। यह बहुत जरूरी है आज के समय में, जबकि मनुष्य निरंतर नई नई बीमारियों और संकटों से घिरा जा रहा है, तो उसे स्वस्थ जीवन सौंपना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हमें इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना होगा। हमें घर परिवार, मोहल्ले और जीवधारियों को प्रेम और अनुराग से देखना होगा। श्रोताओ, गीता जी का वासुदेव सर्वम सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं है, पूर्ण सत्य है। यह संसार ब्रह्म अस्तित्व से उत्पन्न होता है, इसलिए ईश्वर ही इसका आधार है, जो सब तरफ से है। हमें उस एक परमात्मा को साक्षी मानकर जीवन को प्रार्थना के भाव से पूरा करना चाहिए, ताकि जीवन ही जीवन की रक्षा कर सके।
1: जीवन का स्रोत जीवन। अभी आपने सुना ये आज का विचार, आलेख और वाचक स्वर प्रमोद कुमार शर्मा का था।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

समूह स्वर में गए इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। इस पाठ में आज आप सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 195 से दोहा संख्या 198 तक का पाठ। मुख्य स्वर रविंद्र साठे का है।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो

उनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

रामचरितमानस गान के सस्वर पाठ में अभी आपने सुना बालकांड के दोहा संख्या 195 से दोहा संख्या 198 तक का पाठ, मुख्य स्वर रविंद्र साठे का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर। कार्यक्रम समाचार तरंग का समय रहेगा 8:45। ये सभी कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे इस सप्ताह के कृषि कार्य, निराई गुड़ाई और सिंचाई के आधुनिक यंत्र, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, वर्षा जल संग्रह के लिए चेतना जगाएं। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता, ग्वार व मूंगफली फसल में लगने वाले मुख्य रोग एवं उनका उचित प्रबंधन विषय पर डॉक्टर भंवर देवी सिंह नाथावत से संदीप कुमार पारिक की बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुति रेवंतराम लेघा की और संयोजक होंगे अमित सिंह। समय रहेगा शाम 7 बजे। कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युवाणी शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी। इसी के साथ अकेलापन और आधुनिक रिश्ते, अपनी बात रखना सीखें, लूणी नदी और रक्त समूह के बारे में जानकारी दी जाएगी और फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा।

0: बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे बरसात और सेहत, मानसून में फैलने वाले जल जनित रोग, सुकन्या समृद्धि योजना, अमृतमय माँ का दूध, नवजात शिशु की देखभाल, किचन गार्डन के नाम। इसी कार्यक्रम में सुनिए एक भेंट वार्ता गर्मी में त्वचा की देखभाल विषय पर डॉक्टर निकिता गुप्ता से बरखा थानवी व्यास की बातचीत। प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की और संयोजन अमित सिंह का होगा और साथ में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर 12:10 पर सुनिए एक नाटक हम क्या करें, इसके लेखक हैं निर्मोही व्यास। सुबह 8:30 पर सौरभ कार्यक्रम में सुनिए वार्ता साहित्य क्या और क्यों, वार्ताकार हैं ब्रजरत्न जोशी। ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यनारायण शर्मा की वार्ता, विषय है ग्वारफली में उत्पादन प्रौद्योगिकी।
1: किसान भैया राम राम। आज आप बात करा हाँ ग्वार फली उत्पादन की प्रौद्योगिकी बारे। वो तो आप जाना ही हाँ कि गवार जी को एक दलहनी फसल है और ये खेती मुख्य रूपू जी को शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है बैठे करा करा। अपने जी को पश्चिमी राजस्थान है बैठे जी को शुष्क क्षेत्र है बैठे किसानारी आय रो एक मुख्य स्रोत है। इन क्षेत्र में ना गवारी फसल जी की है पशु चारे सारू गवार गम खातर सब्जी खातर हरी खाद रूप में इरी अपा उपज लिया करा और अविशेष रूपू खरीफ और यानी बरसात में उगाने वाली फसल है। सब्जी रखातर उगाने वाली जी की यह फसल है जिके नपा साधारण भाषा में ग्वार फलेरी फसल भी किया करा। ग्वार फलेरी जी की फसल है ग्वारी फसल जी की एक सूखा रोधी फसल है। कम सिंचाई वाली परिस्थितियां में खेती जी की अपा सफलतापूर्वक कर सका। इसके अलावा ग्वार जी की खेती है मर्दारी क्षारियता सहन करने में भी सक्षम है। बारानी और सिंचित दोनों दशाओं में इरी खेती जी की आसानी कर सका। दलहनी फसल होने के कारण मर्दार में लगभग 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त नेत्रजन जी की या स्थिर क्रिया करे। इरे सागे मर्दारी भौतिक दशा सुधारने में भी गवारे जी की फसल है वह सहायक है। इरी ताजी हरी फलिया रो इस्तेमाल जी के सब्जी बनाने में करावा। इरी हरी फलिया में विटामिन ए विटामिन सी लोह तत्व प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस आदि प्रचुर मात्रा

0: बाहर एम 83 आई सी 13 88। तो यहाँ के लिए कई किस्म जी के अपा अपने खेत और सिंचाई रे साधन अनुसार उन्नत किस्म रो चयन जी को अपा कर सकान। मेरे बाद बात आवे बीज और बुआई री। गवार फले री बुआई सारू 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज जी का पर्याप्त है। बरसात वाली फसल री अपेक्षा गर्मी वाली जी की फसल है बीमे बीज जी का घना करा चाहिए। बीज उत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए और इन्हें कठई अपना जी की विश्वसनीय संस्था है बैठो लेना चाहिए। और बीज जब लेवा तो बीज रोपण है बिल जी को है वो जरूर लेना चाहिए। मेरे सागे सागे बीज जी का है पूरा साफ सुथरा बीजो उपचार जी को है वो भी होना चाहिए। तो बरसात वाली फसल की बुआई रो उपयुक्त समय जी को है मध्य जून उलेर मध्य जुलाई तक चोखो मानी जा करे। और असिंचित या आप बिरखा आधारित फसल की बुआई जी की है बिरखा होने पर निर्भर करया करे। किस्म रो चयन रे बाद अपने देखो बात तो बुआई 2-3 सप्ताह पहले अपने पूर्णतया सड़ी हुई गोबर की खाद पूरे खेत में चोखी तरह बिखेर जुताई रसा के भली भांति अपने खेत में मिलानी। हेरो रे द्वारा आप अच्छी तरह खेत की 2-3 जुताई कर पाटो लगा भूमि ने समतल कर लेनी है। दलहनी फसल होने के कारण ग्वार फली ने अधिक नत्रजन की जरूरत वह कोनी। इरे चोखी फसल खातर प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नत्रजन जो है वो दोनों चीजें बीरे अलावा 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास भी आप दे सका। नत्रजन री आदि तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई रे बगत देर भूमि में अपने मिला देनी चीजें। नत्रजन री शेष मात्रा अपने जी की है खड़ी फसल में निराई गुड़े रे बगत देनी चीजें। भूमि रे तैयार बाद बात आवे सिंचाई री तो गर्मी री फसल में आवश्यकता अनुसार 5-7 इंच अंतराल सिंचाई अपने करनी चीजें। जबकि बरसात री जी की फसल है बीमे लंबे अंतराल तक बिरखा न होने दशा में अपने सिंचाई री जरूरत पड़े। खासकर फूल आउने और फलियां बढ़ते बगत भूमि में पर्याप्त नमी रखना सारू जरूरी है। और बिरखा तरफ बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या कर आप ग्वार फलेरी पैदावार जी की है ले सक। फिर बाद खरपतवार नियंत्रण रोग नियंत्रण ऐसा काम जी का है आप कर पा अपन को उत्पादन जी का वो ले सका। देखो कीट नियंत्रण रोग नियंत्रण भी बगत सारू जरूरी है। ग्वार फलेरी फसल ने चैंपा सफेद मक्खी लीफ ऑफर जेसिड पत्ती छेदक फली छेदक इं अकला कीट जी का नुकसान पहुंचाया करे है। और सफल उत्पादन खातर ई कीटा ने नियंत्रण करो बगत सारू जरूरी है। तुड़ाई और उपज की बात करा तो बगत बगत माथा लंबी मुलायम और अधपक्की फलियां की तुड़ाई अपन करते रहना चाहिए। तुड़ाई करा तो फलियां जी की सख्त हो जाए और यानी गुणवत्ता में कमी आ जाए करे और बाजार भाव भी कम मिलिया करे। तो फलियां जी की तुड़ाई है वह अपने सुबह जल्दी उठ करनी चाहिए। ग्वार फली री उपज मौसम सिंचाई व्यवस्था भूमि रो प्रकार बीर माथे निर्भर करया करे। गर्मी री फसल लगभग 4-5 टन प्रति हेक्टेयर और जबकि बिरखा वाली जी की फसल है बीमें लगभग 6-8 टन प्रति हेक्टेयर हरी फलियां उत्पादन अपा ले सका। ग्वार फली अंत्य फसल पद्धति खातर बहुत ही उपयुक्त है। नए रोपित फलों का बगीचा जहाँ बेर बेल आंवला आदि इंहर में दो कतार के बीच में खाली स्थान में इरी फसल आप ले सका। इरे साग साग भूमि उर्वरता में भी वृद्धि करे जेकर फल वृक्षारी बडवार और उपज पर अनुकूल प्रभाव जो है वो पड़ा करे। अन्य जी की सब्जी फसलों साग साग फसल चक्र में सम्मिलित करना उत्पादकता में ग्वार फली जी की फसल है वह लाभदायक है सहायक। तो इं के लिए आप उन्नत तकनीक खेती में अपना अपरार ग्वार फलेरो उत्पादन जी को है आप ले सका।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आपने सुनी सत्यनारायण शर्मा की वार्ता। विषय था ग्वार फली में उत्पादन प्रौद्योगिकी। और आइए अब सुनते हैं लोक भजन।

0: अब्दुल गनी का गाया ये लोक भजन आपने सुना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्री मोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिंद महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायी अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशे ह्यः मॉरिशस देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ

श्रोताओं, इस जगत की रखवाली हमारे ईश्वर के हाथों में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है, क्योंकि हमने प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों के साथ इतनी छेड़छाड़ की है, इतना दुरुपयोग किया है उनका, कि अब हमें भी चेतावनी मिलने लगी है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्वयं इसकी जिम्मेदारी उठाएं कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को, अपनी जो धरा है, इसको संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। श्रोताओं, आज का दिन विशेष है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इनके लिए मनाया जाने वाला जो ये आज का दिवस है, खास इसलिए है क्योंकि इनके विकास में सामने आने वाली विशेष चुनौतियां, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, इन सभी के बारे में लोगों को जानकारी मिले, इसके लिए ये जो आज का खास दिन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का बनाए जाने वाला, ये मनाया जाता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में असाधारण प्राकृतिक विविधता और विकास है। ये पृथ्वी का वो क्षेत्र है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, और यहाँ पृथ्वी का के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% और इसमें दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है। और श्रोताओं, आप और हम सभी जानते हैं कि जैव विविधता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि उस जलवायु से संबंधित क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के बहुत निकट है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है, जहां साल भर उच्च तापमान और उमस बनी रहती है। उच्च तापमान, यहां का औसत तापमान लगभग 18 डिग्री से अधिक रहता है। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, और इसीलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के रूप में जाना जाता है। जहां तापमान एक और गर्म रहता है, वहां पर अत्यधिक बारिश के कारण यहां पर नमी बहुत बनी रहती है, और इसी कारण यहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि यहां पर विविधता भी पाई जाती है। और आप सभी हम जानते हैं कि जैव विविधता का हमारे पर्यावरण के संतुलन में कितना बड़ा योगदान है। तो इसीलिए आज के इस दिन की महत्ता के बारे में आप हमसे बात, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे जानकारी हम शेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की रक्षा कर सकते हैं, और जिससे हमारी मौसम प्रणाली जो है उसको अधिक जानने में हमें सहयोग मिलेगा और हमारे पर्यावरण में हमें हाथ बटाने का मौका मिलेगा। और ये पर्यावरण, श्रोताओं, आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए कितना आवश्यक है और इसका स्वच्छ होना कितना आवश्यक है। और जब तक ये पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, जो चक्र है पूरा जीवन का वो पूर्णतया नहीं घूमेगा, तब तक ये हमारे पर्यावरण जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इसीलिए कहते भी हैं कि हमारे भारत देश में इतनी विविधता है कि जहाँ जाएँ हमें एक नया वातावरण मिलता है, एक नया पर्यावरण मिलता है। तो इसीलिए इसे सहेजना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और विकास की जो धारा है वो बह रही है। ऐसी ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, ये योजना सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है जिसका उद्देश्य बेघर लोगों को या ऐसे लोग जिनके कच्चे मकान हैं उनमें रहने वाले गरीब परिवारों को किफ़ायती दरों पर पक्के घर उपलब्ध कराना। मुख्य रूप से दोनों ही शामिल हैं इसमें, शहरी भी और ग्रामीण भी, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को मकान बनाने खरीदने के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें स्वयं की भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए भी 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। अगर आपके पास जमीन है तो आप सरकार में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको 2.5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी। अपना घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही महती कल्याणकारी योजना, जो कि शहरी क्षेत्रों की बात हमने आपसे की। अब आपसे बात करते हैं ग्रामीण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले घरों के लिए ये सहायता है, यानी कि जिनके घरों पर पक्की छत नहीं है उन घरों के लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शामिल की गई है। मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए प्रति इकाई 1,20,000 रुपये और पहाड़ी या कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। पक्के घर के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये, मनरेगा के तहत 95 दिनों का रोजगार और उज्ज्वला योजना का मुफ्त गैस कनेक्शन भी शामिल है। यानी कि एक योजना के साथ साथ आपको 2-3 योजनाओं का लाभ और मिल रहा है। यानी कि आप घर तो बना ही रहे हैं, साथ में जो है वो शौचालयों के निर्माण के लिए भी पैसा मिल रहा है और आपको बेहतर रोजगार भी मिल रहा है मनरेगा के तहत, और इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना के साथ मुफ्त में गैस का कनेक्शन भी मिल रहा है। लाभार्थी परिवार के नाम या उसके लाभार्थी के नाम या उसके परिवार के नाम किसी प्रकार की कोई भी भूमि नहीं होनी चाहिए, पक्का घर नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये सहायता मिल सकती है। इसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

या आप अपने शहरी क्षेत्रों में हैं तो नगर निगम जो है उनमें जाकर के आवेदन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, और अगर ग्रामीण में हैं तो आप अपनी जो ग्राम पंचायत है उसमें जाकर के समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं और जो भी आवेदन पत्र है उसे भर के आप अपना आवेदन लगा सकते हैं। श्रोताओं, देखिए, घर का होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे सर पर पक्की छत हो, और ये छत भी ऐसी हो जो कभी भी टपकती ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में या शहरी क्षेत्रों में भी हमने देखा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके यहाँ पर घर जो हैं वो कच्ची छत के होते हैं, और जब बारिश का मौसम आता है तो ऐसे में जो ढका हुआ है तिरपाल से या किसी भी चीज़ से, तो वो बड़ा ही मन व्यथित होता है इस चीज़ को देख करके कि छत टपक रही है और लोग डब्बों से पानी निकाल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के द्वारा देखिए बहुत कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए और अपनों को प्यार भरा एक संदेश दिया जाए, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं।

इन्हीं अपनों का ख्याल रखने के लिए श्रोताओं हमें नित नए प्रयास करने पड़ते हैं और हम सभी यही कोशिश भी करते हैं। आप सभी अपने परिजनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोल हमारू चैनल है। सुबह के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे हम सफ़र, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम था मेरे हुजूर।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम था मेरे हुजूर।

आप सुन रहे हैं मेरे हमदर्द मेरे दोस्त फिल्म का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर का,

नौशाद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का नाम था मेरे महबूब।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुबह के 8 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
2: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
3: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से

0: सरकारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
3: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
4: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज

0: चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
1: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
2: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317107 और 0112341444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त

0: पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान सम्पन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgoolam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. In a statement, Foreign Secretary Vikram Misri said the honour has been conferred upon Prime Minister for his green leadership.

0: As Northern Railway adds 2.2 megawatt rooftop solar capacity in April-May, accelerating green energy transition. The Economic Times headlines cites foreign outflows thin down on healthier cues as cooling crude. RBI's rupee support and easing rallies at Asian rivals boost confidence in Indian markets. The dailies have also noted the missing monsoon at the heat wave back in the national capital after 40 days, with the nights and days warmest in 2 years, feeling a 50 degree Celsius. And finally, in a first instance, Sanskrit University introduces BTech in AI and data science, providing opportunities to apply modern computational techniques to traditional domains such as Ayurveda, Yoga, Jyotish, Nyay and other classical disciplines, states the Hindu. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour, also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सौरभ। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रजरतन जोशी की वार्ता। विषय है साहित्य क्या और क्यों।
3: साहित्य क्या और क्यों, ऐसा अद्वितीय एवं अनिवार्य प्रश्न है जिसे जानने, समझने और उसमें गहरे धंसने के बजाय अक्सर हम उसे टालते हुए आगे बढ़ने की जल्दबाजी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस विषय पर पर्याप्त चिंतन, मनन और मंथन का अभाव रहा है, पर अपनी जल्दबाजी और प्रतिक्रियावादी दृष्टि के चलते हम इन आधारभूत प्रश्नों को पर्याप्त समय और महत्व ही नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप साहित्य के संस्कारी पाठकों की कमी और अपर्याप्त सजगता के चलते साहित्य की हमारी समझ और प्राथमिकता के प्रथम चरण में ही चीज़ें दम तोड़ देती है। सर्वप्रथम तो यह भी समझने की बात है कि जब हम किसी विषय के क्या पर बात करते हैं यानी विज्ञान, और क्यों पर बात करते हैं यानी दर्शन, यह तो हम जानते ही हैं कि विज्ञान और दर्शन जीवन को समझने के दो मुख्य साधन हैं। कहा भी जाता है कि विज्ञान का इतिहास बिना दर्शन के अंधा है और दर्शन का विज्ञान बिना विज्ञान इतिहास के खाली है। जहाँ विज्ञान सत्य का व्यवस्थित परीक्षण करते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ता है, वहीं दर्शन उन पर विचार करते हुए उसमें निहित अंतर्निहित सत्य को खोजने की राह पर आगे बढ़ता है। यानी दोनों का उद्देश्य संसार में फैली पसरी जटिलताओं को सरलता से अभिव्यक्त करना है, अज्ञात को ज्ञात करना है। इसलिए प्रश्न उठता है कि जब हम साहित्य क्या और क्यों के साथ संवाद करते हैं तो क्या साहित्य एक साथ कई अनुशासनों का समुच्चय है, या साहित्य भी अन्य कलाओं की तरह मनोरंजन का साधन भर है या अभिव्यक्ति का जरिया। यहाँ यह स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि अगर हम साहित्य को उसके पूरे रूप में या कह लें समग्रता के साथ समझने की चाहना रखते हैं तो हमें ये समझना होगा कि साहित्य का संबंध कई अनुशासनों से है। भारतीय ज्ञान परंपरा में समझने की भी दो विधियां बताई गई हैं। एक विधि है कि क्या है, दूसरी

क्या नहीं है। सामान्यतः प्रचलन में क्या है की बहुलता देखी और पाई जाती है, लेकिन हमारी अपनी परंपरा में ज्ञानी जन जब किसी विषय वस्तु तथ्य पर बात करते हैं तो वे नकार के क्षेत्र में जाकर यानी क्या नहीं है से अपनी बात कहना आरंभ करते हैं। यानी जैसे ही हम यह कहते हैं कि साहित्य धर्म नहीं है, साहित्य मनोरंजन नहीं है, साहित्य दर्शन नहीं है, साहित्य नीति नहीं है, तब आखिर में जो प्रश्न हमारे सामने आता है वह यह है कि फिर साहित्य क्या है। सम्यक दृष्टि से देखें तो साहित्य जनता संस्कृति परंपरा का जागरूक प्रतिनिधि है। वस्तुतः साहित्य आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है, साहित्य स्वयं का स्वयं से संवाद है, सार्वभौमिक सत्य का सारथी है साहित्य। एकमात्र साहित्य ही ऐसा ज्ञान अनुशासन है जो जीवन से उत्पन्न होकर जीवन का अन्वेषण करता है, और यह अद्वितीयता ही उसकी अपनी वैशिष्ट्य को रेखांकित करती है, रूपांतरित करती है, जो किसी अन्य अनुशासन के गरीब बिरादर की छवि से उसे मुक्त रखता है। सहचर्य इसका मूल है। स्वयं साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति को ही देखें तो पाएंगे कि साहित्य शब्द ठीक उसी तरह निर्मित हुआ है जैसे सतत से सातत्य बनता है, उसी तरह सहित से साहित्य शब्द बना है। प्रश्न उठता है कि सहित या साथ किसका, किसका सहचर्य, यानी जब शब्द और अर्थ साथ हों वही साहित्य है। आचार्य भामा ने भी कहा है कि शब्दार्थो सहितौ काव्यम, यानी जब शब्द और अर्थ साथ हों। कोई प्रश्न उठा सकता है कि शब्द और अर्थ तो सदैव ही साथ दिखाई देंगे, फिर सहित कहकर क्या नया कहा गया। लेकिन गौर से देखेंगे तो नया कहा गया है, और बहुत ही सावधानी और सजगता के साथ नया कहा गया है। जब शब्द और अर्थ के साथ को साहित्य कहा जा रहा है तो उसके मानी हुए कि बिना किसी घटबड़ के ऐसी मनोहारिणी स्थिति या अवस्था का चित्रण जो शोभाशीलता के साथ हो या शोभाशीलता से संपन्न हो, शब्द और अर्थ के प्रयोग में संगति हो, किसी तरह का असंगतपन दिखाई या अभिव्यक्त न हो। अब यह जानने और समझने के बाद कि साहित्य शब्द और अर्थ का सहचर्य है, वह भी संगत और शोभाशीलता के साथ, तब दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख आता है कि साहित्य क्यों। साहित्य क्यों को हम एक साथ कई कोण से देख जान और समझ सकते हैं। सबसे पहले तो पाठक के लिए साहित्य क्यों, फिर लेखक के लिए साहित्य क्यों, और फिर स्वयं साहित्य के लिए ही कि मैं क्यों, मेरे होने के क्या मानी। जब हम इन तीनों कोणों से इस तथ्य को देखेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो साहित्य क्यों का जो सम्यक उत्तर हमारे सामने आएगा, हमारी संभावना है कि वह अपने आप में लगभग समग्रता के करीब होगा। समग्र तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन समग्रता के बहुत निकट होगा। ज्ञान के समस्त अनुशासनों की तरह साहित्य भी एक खोज है, अनुसंधान है, तलाश है। यह तो हम जानते ही हैं कि जानने की भी कई विधियां हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण इसके लिए शास्त्रों में दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक फूल को हम अगर वनस्पति शास्त्री के पास लेकर जाएं तो वह कहेगा कि ये फूल है, इसके ये अंग उपांग है, ये पराग है, ये कण है, ये पुंकेसर है, ये पत्तियां हैं, ये पंखुरियां हैं, ये सब बता देगा। मनोवैज्ञानिक के पास लेके जाएं तो वह खुशबू के कारण, रंग के कारण, हमारे संपर्क में होने वाले परिवर्तनों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेगा। और उसी फूल को हम अर्थशास्त्री के पास लेकर जाएं तो वह इत्र और सुगंध और दवा इत्यादि बनने से समाज को कितना अर्थोपार्जन हो सकता है, इस दृष्टि से फूल के महत्व को हमारे सामने रखने की और रेखांकित करने की कोशिश करेगा। किसी समाजशास्त्री के सामने फूल लेकर जाएंगे तो सामाजिक संरचना और लोक जीवन में फूल की उपस्थिति और व्यवहार पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर देगा। लेकिन इनमें से यह कोई भी नहीं बता पाएगा कि फूल का सौम्य

0: क्या है? यह कार्य सिर्फ और सिर्फ कवि या कलाकार ही कर सकता है। तब प्रश्न उठेगा कि अन्य ज्ञान अनुशासनों में साहित्य का स्थान क्या है। सबसे पहले तो यह जान और समझ लेना बहुत आवश्यक है कि अन्य ज्ञान अनुशासनों से साहित्य का रास्ता भिन्न है, अलग है, खासकर विश्लेषणात्मक ज्ञान के प्रकारों से। सभी विचारक लगभग इस बात पर सहमत है कि जहाँ ज्ञान के अन्य सभी अनुशासनों में कुछ न कुछ उनकी खोज की प्रक्रिया में जो छूट जाता है, उसे पूरा करने का काम कला, कविता या साहित्य करता है। यानी यह जो अपूर्ण, अज्ञात और अलक्षित है, उसे पूर्ण, ज्ञात और लक्षित करने का काम, चाहे वो पाठक के लिए हो या लेखक के लिए हो या स्वयं साहित्य की अपनी खोज की प्रक्रिया के लिए हो, वो साहित्य की प्रक्रिया और उस माध्यम से ही तय होता है। यानी हर बड़ा रचनाकार और कलाकार वह नहीं होता जो प्रसिद्ध रचनाएं रचता है या लोकख्यात रचनाएं रचता है, वरन वह कवि और बड़ा रचनाकार होता है जो हमारे समय के संश्लिष्ट ज्ञान को निचोड़ कर सरलता से, सहजता से हमारे सामने सर्वजन संवेद्य, यानी सभी को समझ में आ सकने वाला और सभी की संवेदना को एक साथ झंकृत करने वाला वाले सूत्र में हमारे सामने उसे प्रस्तुत कर सके। आप अक्सर देखते हैं कि जब एक कलाकार फूल, नदी, पहाड़ आदि का मानवीकरण कर रहा होता है, यानी वह उसे अलंकार के रूप में उपयोग जरूर कर रहा है, मानवीकरण एक अलंकार है, पाश्चात्य अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, लेकिन दरअसल में अपनी रचना प्रक्रिया के दौरान वह स्वयं को फूल, नदी या पहाड़ बनाकर अपने अनुभव के साथ हमारे अनुभव को साझा कर रहा होता है। दर्शन की पदावली में कहें तो विषय और विषयी का तादात्म्य हो रहा होता है, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो रहे होते हैं। तो इसलिए वह उस समय उसके द्वारा अनुसूत ज्ञान वस्तुतः ज्ञान होता है, वो किसी तरह की सूचना नहीं होती, और सूचना और ज्ञान में यह भेद भी यहाँ स्पष्ट हो जाता है। हमारी अपनी परंपरा में शंकराचार्य ने कहा है कि अनुभव ही ज्ञान है, बाकी समस्त सूचनाएं हैं। तो एक श्रेष्ठ रचनाकार, उसकी अद्वितीयता यह है कि वह अन्य ज्ञान अनुशासनों के पास जो उपलब्ध नहीं है और जो केवल साहित्य के पास उपलब्ध है, यानी अनुभूति परक ज्ञान का ऐश्वर्य केवल और केवल कलाकार या साहित्यकार ही उपलब्ध करवा सकता है, समाज को उसे लाभान्वित कर सकता है, और व्यापक समाज में साहित्य की यही सबसे बड़ी महत्ता है। इन अर्थों में साहित्य एक विकसनशील चेतना है, इसलिए व्यापक समाज में जब हर कोई साहित्य का झंडा लेकर चल रहा हो, तो विवेकवान सहृदय को चाहिए कि वह यह देखे कि क्या उस कृतिकार का अनुभव मानव चेतना के नए आयामों में कुछ जोड़ रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि विपुल मात्रा में जो लेखन हो रहा है वह बेकार है, बल्कि हमें यह समझना होगा कि लेखन के समूचे इतिहास में इतना लिखा गया है, वह कोई आज के लेखकों और प्रकाशकों का कार्य नहीं है। लेखन हमेशा से होता आ रहा है। हाँ, हमें यह जानना और समझना होगा कि जो स्तरीय नहीं है, औसत है, उसका भी महत्व है, और वह महत्व इस रूप में है, वह श्रेष्ठ के लिए एक वातावरण बना रहा होता है, श्रेष्ठ उसी में से निकलकर बाहर आता है, और स्वयं उसे श्रेष्ठ मानना हमारे लिए गलत होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साहित्य क्या और क्यों हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य जिज्ञासाएं हैं, जिनको इन दृष्टियों से देखा, समझा और जाना जाना चाहिए।
1: सौरभ, कार्यक्रम में अभी आपने सुनी वार्ता साहित्य क्या और क्यों। वार्ताकार थे ब्रजरतन जोशी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से
4: बस आइए।

0: करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल अमारू चैनल है। सुबह के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम समाचार तरंग।
1: आकाशवाणी जयपुर नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सालेहा। श्रोताओं, हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ खेती के जो तौर तरीके हैं वो भी काफी बदल गए हैं, उनकी तकनीक और नीतियां। और आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल जी। सर नमस्कार।
2: नमस्कार मैम, सारे किसान भाइयों को भी नमस्कार, राम राम।
1: सर, सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे 11 अंकों की जो विशिष्ट आईडी है, जिसे हम फार्मर आईडी या किसान आईडी कहते हैं, आखिर क्या है और इससे किसानों को क्या फायदा हो रहा है, राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है?
2: मैम, जो फार्मर आईडी है ये एक तरीके से कृषि का आधार है
1: जी।
2: जैसे आधार कार्ड है, कृषि का आधार कार्ड है ये। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने सबसे ज़्यादा 96% फार्मर आईडी इन्होंने बनाई है। और लगभग 86.66, मतलब यूं माने कि अभी 87 लाख के आंकड़े को हम टच करने वाले हैं, फार्मर आईडी बनाई है। और इस फार्मर आईडी के माध्यम से हम सारी योजनाओं का लाभ जो किसानों को है वो हस्तांतरित करेंगे। ये एग्रीस्टेक एक परियोजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत किया गया है। इसमें किस किसान के पास कितनी जमीन है, उसका खसरावार, उसका डिजिटल सर्वे, सारी, मान लीजिए एक किसान के पास 5 जगह अलग अलग जगह है तो भी वो उसको सारी जगह उसके अंतर्गत उसको पूरा डिफाइन किया गया है। यानी एक पूरी तरीके से फार्मर की विवरण है। और इससे जुड़ा हुआ एक और मैं आपको निवेदन करूं, मैं कल ही राजसमंद उदयपुर से आया हूं, तो हमने आईटी के माध्यम से जो फार्मर आईडी है इसके माध्यम से किसानों को सशक्तिकरण करने के लिए वहाँ पे पायलट बेस पे राजसमंद और सिरोही में हमने इसकी शुरुआत की है। और किसान इसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अपने जो उर्वरक है उनकी बुकिंग कर लेते हैं, उनको लंबे लाइन में वेट नहीं करना पड़ता। काला बाजारी और जो यूरिया को, जैसे मैं आपको बताऊं एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो 267 रुपये में किसान को जो यूरिया का बैग मिलता है 45 किलो का, उस पर सरकार 1600 रुपये तक सब्सिडी देती है। इतनी सब्सिडी के कारण जो दूसरी जगह यूज होते हैं वहां भी किसान को ही मिले, दूसरे लोग इसका दुरुपयोग नहीं करें, उनकी कालाबाजारी नहीं हो। इस ऐप में एक ये भी रहेगा कि किसान को ये पता रहेगा कि किस डीलर के पास कितना स्टॉक है, वहीं पे उसको QR कोड जनरेट होगा, किसान

0: अपने QR कोड हुआ वो QR कोड ले जाके जिस दुकान पे उसने बुक किया है डीलर के पास वहाँ उसको वांछित मात्रा में यूरिया और जो अन्य
1: आपने बताया हमें ये फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम के बारे में।
0: जी मैम।
1: जी सर, चर्चा में हम बात नई पहलों की कर रहे हैं, तो खेत बचाओ अभियान जो अभी चल रहा है और 30 जून तक चलेगा, आखिर वो क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
0: देखिए मैम, खेत बचाओ अभियान ने भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों में हम विगत समय से अधिक उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें डाल रहे हैं, यूरिया NPK, और इन चीज़ों से क्या है, खेती में एक बार तो उत्पादकता हमें लगता है कि बढ़ रही है, लेकिन उसी क्रम में हमारी जो खेत की जो क्वालिटी है, जो हमारी मिट्टी की क्वालिटी है, वो ख़राब होती जा रही है। फिर आप देखें इसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ रहे हैं। आप देखें इतने सारे कैंसर के मरीज आ रहे हैं, अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि यूरिया और कीटनाशक हम सीधा ले रहे हैं। तो खेत बचाओ अभियान में हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए और जो यहाँ पे जो

0: महसूस की गई?
1: देखिए मैम, खेत बचाओ अभियान ने भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों में हम विगत समय से अधिक उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, ये चीज़ें डाल रहे हैं, यूरिया एनपीके, और इन चीज़ों से क्या है, खेती में एक बार तो उत्पादकता हमें लगता है कि बढ़ रही है, लेकिन उसी क्रम में हमारी जो खेत की जो क्वालिटी है, जो हमारी मिट्टी की क्वालिटी है, वो ख़राब होती जा रही है। फिर आप देखें इसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ रहे हैं। आप देखें इतने सारे कैंसर के मरीज आ रहे हैं, अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि यूरिया और कीटनाशक हम सीधा ले रहे हैं। तो खेत बचाओ अभियान में हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए और जो यहाँ पे जो प्राकृतिक ढंग से है वो खेती करें, यूरिया का जितना प्रिस्क्राइब उपयोग है उतना करें। पुरातन संस्कृति में हमारे जो खेती में जो सूक्ष्म जीवांश होते हैं उनकी मात्रा कैसे बढ़ाएं, उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, तो उन पे हम जोर दे रहे हैं। कैसे आगे वो अपने प्रोडक्ट बेच पाएं, कैसे वो प्राकृतिक खेती को सर्टिफाई करा पाएं, तो इसमें इस तरह के बहुत सारे विस्तृत कार्यक्रम चल रहे हैं।
0: सर, अगर हम इसमें कुछ ऐसी लचीली फसल की किस्मों की बात करें, चाहे वो मशरूम हो, लीची हो, स्ट्रॉबेरी हो, तो कई तरह के प्रयोग इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
1: बिल्कुल मैम, इसमें हम अब जैसे मैं कल गया था, महाराणा प्रताप उदयपुर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है मशरूम के क्षेत्र में। तो उन्होंने मशरूम चूंकि पूर्णतः एक कंट्रोल्ड वातावरण में होती है, तो हम इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। इसी तरह जो ढेंचा के बीज हैं उनको हम लगा रहे हैं, तो जो प्राकृतिक खेती से संबंधित जो उसके साथ एक क्रॉप सम्मिलित रूप में हो सकती है, उस पर भी हमारा पूरा जोर है।
0: सर, लगातार बात हो रही है राजस्थान को एग्रीटेक हब बनाने की, तो इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है, और जब ऐसा संभव होगा तो किसानों को व्यावहारिक रूप में आखिर इससे क्या लाभ मिलेगा, और आधुनिक तकनीक या हम कहें कि बाजार आधारित खेती, इस बारे में किसानों को कैसे समझाया जा रहा है?
1: देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान जो दलहन के क्षेत्र में प्रथम है, मूंग, बाजरा, ग्वार जो में हम प्रथम है, इसी तरह जो सरसों के क्षेत्र में हमारा जो तिलहनों में ओवरऑल हम द्वितीय है, लेकिन सरसों में हम प्रथम है, और 4,800 हेक्टर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई अंतर हमारे जो है वो लगाई गई है, और पीएम कुसुम में हम राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में देश में प्रथम स्थान पे हैं। तो हमारा किसान न केवल खेती कर रहा है पर बल्कि सोलर की भी खेती करता है, सोलर एनर्जी की भी खेती कर रहा है, तो यहाँ बहुत संभावनाएं हैं राजस्थान में काम करने की। इसमें जो हमारा एग्रीस्टेक, जैसे मैं आईटी का आपने पूछा, तो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई इन एग्रीकल्चर बना रहे हैं, राज एम्स बना रहे हैं, हमारा राज किसान सारथी पोर्टल है उस जिसमें 58 से अधिक मॉड्यूल है, देश में इसको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, इसके माध्यम से हम सारे डीबीटी किसान के माध्यम से कर रहे हैं। तो और राइजिंग राजस्थान में भी हमारे बहुत सारे एमओयू हुए हैं, तो कृषि के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं।
0: और ये जो राजसारथी किसान सारथी ऐप है, ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है?
1: हाँ मैम, ये हमने राज किसान साथी पोर्टल जो हमारा राजस्थान में मैन हमने इसमें विकास किया है हमारी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, बहुत सारी भाषाओं में, चूंकि राजस्थान में हिंदी का तो हिंदी में है, सारे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की है, चाहे हॉर्टिकल्चर की है, सारी जो है किसान इसके माध्यम से ही अप्लाई करते हैं, इसके माध्यम से उनको डीबीटी हो रही है। इवन हमने जो अब के मिनी किट में बीज वितरित किए हैं, जो इसके मूंग के हैं, मक्का के हैं, दूसरे सारी चीज़ें वो इसके माध्यम से वितरित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम फार्मर आईडी जो कि वेरीफाइड है इसके साथ अटैच कर रहे हैं, जनाधार में हमने फार्मर आईडी को अटैच कर दिया है, तो आने वाले समय में किसान भाइयों को अलग से डॉक्यूमेंट देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हर एक स्कीम के लिए जो अलग अलग डॉक्यूमेंट देते हैं वो डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, एक साथ में अपना फार्मर आईडी डाला, उसी से ओटीपी आया और अपना वेरीफाई। तो मैं आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जिनकी भी फार्मर आईडी नहीं बनी है या उनको लगता है कि उनका जमीन का कुछ हिस्सा उसमें नहीं जुड़ा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ई मित्रा में जाके हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी है वो संपर्क करें, उनसे संपर्क करें।
0: सर, हमारा देश और प्रदेश जो है कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि जो है बहुत हद तक मौसम पर आधारित है, और ये चीज़ें हमारे

0: बात नहीं होती, कई बार कुदरती आपदाएं भी आ जाती है। ऐसे में जब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है तो पीएम फसल बीमा योजना उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है। राजस्थान में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है और कितने किसानों ने इससे जुड़कर लाभ उठाया है?
1: राजस्थान में सबसे पहले बताऊं, देश के पॉलिसी जारी करने में, बीमा पॉलिसी जो कृषकों की है उनको जारी करने में देश में प्रथम स्थान पे है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम देश में पॉलिसी जारी करने में प्रथम स्थान पे हैं। एक छोटा सा फिगर देता हूँ मैम आपको कि कितना इसमें होता है। 2016 से अब तक लगभग 23.32 करोड़ पॉलिसीज हमने पूरे प्रदेश में जारी किए और किसान ने उसके लिए लगभग 7,800 करोड़ रुपए उन्होंने किसान ने प्रीमियम के रूप में जमा कराया है और उसके विपरीत उसको लगभग 32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि बीमा क्लेम के रूप में मिली है। बहुत बड़ी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें पूरा योगदान देते हैं। आप देखें लगभग 19,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसमें अपना जो अंशदान दिया है, ऐसा ही राज्य सरकार ने 19,000 करोड़ से अधिक योगदान दिया है इसमें। खरीफ में सिर्फ उसको 2% प्रीमियम देना पड़ता है, रबी में 1.5% उसको प्रीमियम देना पड़ता है और अगर ये स्वैच्छिक है किसान बाहर रहना चाहे इस योजना से बाहर रह सकता है और लगभग 24 फसलें रबी की और 24 खरीफ की फसलों को इसमें शामिल किया गया है।
0: कोशिश ये की जाती है सरकार की तरफ से कि किसानों को पूरी तरह से गुणवत्ता वाले बीज मिले। तो ये जो गॉट टेस्ट की बात आती है और बीजों के प्रमाणीकरण, आखिर इसके पीछे क्या सोच है और क्या कदम उठाए गए हैं?
1: जैसे कि आप कह रहे हैं बीज का मूल यही है कि जो बीज अगर सही है तो किसान की फसल सही होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो इसके लिए हम जो लाइसेंस जो है वो पूरा एक प्रोसेस में बीज दिया जाता है। 3 साल के फसल कटाई के जो प्रयोग हैं वो उसको सबमिट करने होते हैं, उसके बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद बीज का प्रमाणीकरण होता है। मीनवाइल इसमें अगर बीज सही है कि जैसे आपने कहा कि किसान का जो DNA फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट है इसका बीज का, वो भी हम करवाते हैं कि उसकी बीज की उपादेयता सही हो। राज्य सरकार जो है यहाँ स्टेट हमारा कृषि बीज निगम है उसके माध्यम से हम वो खरीद करते हैं जिससे जो उपयुक्त और प्रमाणित बीज है वो प्राप्त हो सके, उसकी डिफाइन होती है। अभी मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी गया, वहाँ उन्होंने प्रताप नस्ल और मूंगफली और मक्का के उन्होंने बीज बहुत सारे अच्छे डेवलप किए, नई नई वैरायटी। इसी तरह काजरी ने बहुत सारी अच्छी वैरायटीज एक
0: बड़ी किस्में
1: उन्होंने एक को हम पूरे प्रदेश में कैसे लागू करें उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं।
0: युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए और अगर खास तौर पर हम छात्राओं की बात करें तो क्या कुछ एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है?
1: हमारा मंतव्य है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। तो इसके लिए जो 10+2 में बालिकाएं अध्ययनरत हैं उनको हम 15,000 रुपये प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देते हैं। इसी तरह जो UGPG कर रही हैं, स्नातक स्नातकोत्तर बालिकाएं कर रही हैं, उनको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दे है। इसी तरह अगर कोई PhD बालिका कर रही है तो उसको 40,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का है प्रावधान है।
0: सर, आप युवाओं और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग करे तो बहुत सारे एक ही खेत में बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे वो फसल भी लगाए, वहाँ पे जो फल फ्रूट भी लगाए, सब्जियाँ भी लगाए, प्लांटेशन भी करे, फिशरीज भी करे, पशुपालन भी करे। द्वितीय IT का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है इसमें और सबसे बड़ा है कि कृषि में जो लोगों ने पहचान लिया है कि देखिए एक दाना जो है वो कितना लाखों दाने बन सकता है, तो बहुत बड़ी इसमें रिटर्न ROI है, बहुत बड़ी संख्या में रिटर्न लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं। किसान जो कैश क्रॉप्स है परंपरागत कृषि से हटेकर नई नई कृषि पे जा रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसको अधिक मात्रा में उनको जो मूल्य है वो मिल रहा है। और सबसे बड़ा है कि पानी के लिए भी जो राजस्थान में पानी की कमी, उसमें एक हमारा राज्य सरकार की स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से हम बहुत सारा इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे निवेदन करूं कि लगभग 35,000 पोंड बने हैं, अब 12,500 हमारे डिग्गियां बनी हैं, 32,000 किलोमीटर हमारी पाइपलाइन लगी है, हमारे 39 लाख मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउसेज बने हैं, 16 लाख मीटर क्षेत्र में

0: शटिन लगा रहे हैं, 27 लाख मीटर लो प्लास्टिक टनल लगा रहे हैं। ये इवन आप देखेंगे राज्य सरकार की एक और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, 41,000 किलोमीटर हम लंबी हमने खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी भी लगाई है,
1: और तारबंदी पे अनुदान
0: मिल रहा है। तो इस तरह से कृषि का क्षेत्र में जो एक पुरातन था कि एक या दो फसल ले रहे थे, वो उसके बजाय मल्टीपल फसल उसमें ले रहे हैं।
1: यानी कुल मिलाकर कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आए हैं और राजस्थान ने देश में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है। तो कृषि आयुक्त महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे अनुमति ले उससे पहले आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सिद्धार्थ जैन, तकनीकी सहयोग सौरभ शर्मा, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादन माधुरी वशिष्ठ और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61 लाख 15 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में, 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित, श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा

0: अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली रिफाइनरी देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर कल बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी परिसर और प्रस्तावित जनसभा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
1: पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम होने वाला है, कई वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे, और ये राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी ये रिफाइनरी, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाली हमारी ये। आज मैं यहाँ रिफाइनरी में आया हूँ, मैंने यहाँ व्यवस्थाओं का देखा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बाड़मेर बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है, जो आपको इंतजार था, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को देश के ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य के 59,217 बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई गई। ये अभियान आज और कल भी जारी रहेगा। अभियान के तहत राज्य के करीब 1,04,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत आज और कल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इसके लिए 75,000 से अधिक टीमें बनाई गई है, जिनमें मोबाइल और ट्रांजिट टीमें भी शामिल है। ये टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईंट भट्टों और दुर्गम क्षेत्रों में मुस्तैदी से काम कर रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनसहभागिता और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 154 भामाशाह, 99 प्रेरक और 23 NRI दानदाता शामिल हैं। इन सहयोगियों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 318 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। देश भर में आज महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम अनब्लॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली जिले में सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग पर कृषि विभाग के सभागार में चर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं करौली जिले में आंकड़ों के महत्व पर जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई है, और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सांख्यिकी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि जिले के विकास की दिशा तय करने का सशक्त माध्यम बन रही है। करौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कृषि, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग में प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग लगातार बढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जा रही है और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। सांख्यिकी दिवस पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सुशासन और विकास को और

0: प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा होगी। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: प्रदेश में इन दिनों मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मॉनसून गुजरात की उत्तरी सीमा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम की बात करें तो डबोक में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ में 10 और पिलानी में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान का श्रीगंगानगर 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर में 43.2 और जैसलमेर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं शादी खां और पार्टी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे सादी खां और साथी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। आज आप इसकी 1316वीं कड़ी सुनेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत

0: में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया?
1: अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल। वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
3: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
3: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
3: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फलकंद

0: बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात तो बुधनी, ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? हाय राम, क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे। अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
2: चुप्पा
0: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है।
2: हा?
1: जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें

0: अपने लिए लाऊंगी बस।
1: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे, बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवार?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ
2: चलो
0: चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं।
4: अब
0: चलो,
4: ये देखो ये
0: पेड़ देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो, चलो।
5: इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
4: ध्यान से, ध्यान से बेटा।
3: आई,
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
3: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना।
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा।
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
3: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल,
0: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो।

0: ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ ले लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया है? अब किसे काटे?
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या?
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: ओ जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
3: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें

0: कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे हैं।
1: तू समझ गई है?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता?
0: रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी? तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
1: सच्ची।

0: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
7: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाइए श्रोताओं, सुबह के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शाश्वत सचदेव के संगीत निर्देशन में आपने सुना कुमार का लिखा गीत। उषा जैन शाश्वत सचदेव की आवाज़ों में। इनका साथ दे रहे थे कंगना रनौत, वरुण मित्रा, अंशुल

की आवाज में। फिल्म का नाम था वाटर। अगला गीत आइए सुनते हैं, सुखविंदर सिंह, साहिल हाडा, मुनव्वर मासूम की आवाजों में, सरबजीत फिल्म का ये गीत।

0: तनिष्क बागची के संगीत निर्देशन में शब्बीर अहमद का लिखा गीत आपने सुना, देव नेगी, राजा हसन और योयो हनी सिंह की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था लव यात्री। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?

0: नेही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

तोशी और साथियों की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था फिर। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, मिथुन के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा गीत आप सुनेंगे, मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सैम भट्ट की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मर्डर 2।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: है पैसा।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

तनु वेट्स मनु, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाज थी कृष्णा की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। अलका याग्निक, एम एश्री और कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है सात रंग के सपने।

ये आवाज़ें थी अरिजीत सिंह और साथियों की। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत, कार्यक्रम का पहला गीत तलत महमूद की आवाज़ में।

ये आवाज़ थी तलत महमूद की, फिल्म का नाम था परछाइयाँ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम अनाड़ी।

फिल्म तीसरी कसम में अभी आपने सुना मुकेश को। श्रोताओं, भूले बिसरे गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मन्नाडे और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम श्री 420।

अपना फिल्म हंसते जख्म में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम वक्त।

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म का नाम जाल गुमराह।

0: दोनों चलो एक बार।
1: भूले बिसरे गीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अभिमान में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम आन।

फिल्म कभी कभी में अभी आपने सुना मुकेश को, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म पाकीजा में।

0: फिल्म पाकिजा में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत

0: INS तरकश और INS रिक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी इसी सभा में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे नाटक हम क्या करें, इसके लेखक होंगे निर्मोही व्यास। दिन में 1:05 पर बहने सुनेगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, विषय रहेगा बरसात और सेहत, मानसून में फैलने वाले जल जनित रोग, सुकन्या समृद्धि योजना और रोचक जानकारियां। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय रहेगा गर्मी में त्वचा की देखभाल कैसे करें। जानकारी देंगी डॉक्टर निकिता गुप्ता और इनसे बातचीत करेंगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास। प्रस्तुति होगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजक होंगे अमित सिंह। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगी संध्या शर्मा ओझा और कोमल पुरोहित।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्याकालीन सभा के प्रसारणों में शाम 5:05 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज के इस कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे, आज की बात विषय रहेगा टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जरूरी। साथ ही सुनेंगे रोचक जानकारियां और फिल्म संगीत। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे माधव व्यास और सुमन बिश्नोई। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार।

शाम 7 बजकर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। आज के इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे, चर्चा विषय रहेगा इस सप्ताह कृषि कार्य, साथ ही सुनेंगे कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारियां और सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा ग्वार और मूंगफली फसल में लगने वाले मुख्य रोग और उनका उचित प्रबंधन। जानकारी देंगे डॉक्टर भंवर देवी सिंह नाथावत और इनसे बातचीत करेंगे श्री संदीप कुमार पारिक। प्रस्तुति होगी श्री रेवंत राम लेगा की, संयोजक होंगे श्री अमित सिंह। आज का ये कार्यक्रम पेश करेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और संदीप कुमार पारिक। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 8 बजे से और रात्रि 9:15 बजे से और रात 9:30 बजे से। रात 10 बजे जयपुर से रिले होगा खेल जगत। रात 10:30 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत और गजलें।

ये था हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 हुए हैं। पेश है नाटक हम क्या करें। इसके लेखक हैं निर्मोही व्यास, प्रतिभागी हैं मंजू सहगल, सरिता शर्मा, शीलम शर्मा, तृप्ति गुप्ता और अर्चना भटनागर।

0: बताता बेटी।
1: आ गई अम्मा, बाजार हो आई?
0: हाँ, थोड़ी मिठाई लानी थी, ले आई।
1: दिनेश अंकल के यहाँ पापा का फोन आया था, कह रहे थे भैया से अब कोई उम्मीद नहीं रही, वह तो इस घर में पैर रखने को भी राजी नहीं है।
0: तो वह भैया से मिला है?
1: हाँ, अब वे हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते।
0: यानी कि हम उसके लिए अब मरे हुए सामान हैं?
1: इसका तो यही मतलब हुआ, उन्हें अब हम लोगों की चिंता करने की जरूरत ही क्या है।
0: ऐसा कभी नहीं सोचा था कि शादी होते ही वह हमसे इस तरह किनारा कर जाएगा। पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आज हमारा खून ही हमारा साथ छोड़ गया।
1: ये तो सब किस्मत का खेल है अम्मा।
0: अब तो तेरे पापा की हिम्मत ही नहीं रही होगी बेटी उनके यहाँ अकेले जाने की।
1: लेकिन ऐसे जल्दी भी क्या है?
0: अरे तू नहीं समझती, बड़ी मुश्किल से कोई लड़का दिखाई दिया है, अब यह तो पक्की बात है अकेले ही सही, वह गए तो जरूर होंगे वहां।
1: गए होंगे।
0: तो ऐसा कर, अपना यह प्रेस का काम निपटा कर जल्दी से पहले अपने कपड़े बदल ले। और सुन, मामी जी ने जो साड़ी दी थी अभी वही पहनना।
2: मैं अपनी साड़ी किसी को नहीं दूंगी, वो तो मैं ही पहनूंगी जब वो मुझे लेने आएंगे।
0: तू अभी बाहर जाकर बैठ।
2: क्यों, मैं तो यहीं रहूंगी, यहीं तो आएंगे बबली के पापा।
1: तो बबली नहीं आएगी क्या?
2: वो भी आएगी, दोनों साथ ही तो आएंगे।
1: फिर तो सुनीता दीदी, बाहर चौकी पर बैठकर ही तुम्हें जीजा जी का इंतजार करना चाहिए, कहीं बाहर से ही देखकर वापस ना चले जाए।
2: हाँ, ये तो तूने अच्छा याद दिलाया, वो कई बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं, मुझसे बिना मिले ही लौट गए।
1: इसलिए कि तुम्हें बाहर बैठी हुई दिखाई नहीं पड़ती होंगी।
2: हाँ, यही बात है।
0: तभी तो कहती हूँ तू बाहर ही रह।
2: तब तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ चौकी पे जाके, फिर देखती हूँ वो वापस लौट के कैसे जाते हैं।
1: प्रेम से कही हुई हर बात मानती है,
0: ये तो उसके मूड पर निर्भर है। खैर, मैं ऐसा करती हूँ तेरे पापा उनके साथ लेकर आए, तब तक एक दफे सावित्री बाई के यहाँ आती हूँ। प्रीति अंदर होगी, उसे कहकर बैठक साफ करवा ले, ईश्वर ने चाहा तो आज कोई ना कोई बात बन ही जाएगी। मिठाई मैं ले आई, नमकीन कुछ अंदर रखी है, चाय बनाकर दे देंगे। प्रीति को कहना प्लेटें भी साफ कर ले, मैं अभी आती हूँ। और सुन, बीच में आ जाए तो मुझे बुलवा लेना।
1: अच्छा, आप हो आओ अम्मा, और उस जगत बुआ को भी कह आओ कि उन्होंने जिसकी बात छेड़ी थी वह अभी आ रहा है, उसके आगमन पर क्या कुछ करना है जरा ये भी तो पूछ आती।
3: अम्मा क्या कह रही दीदी, और कौन आ रहा है आज?
1: है कोई व्यापारी, सौदा करने आ रहा है।
3: किसका?
1: किसका क्या, मैं जो बैठी हूँ मेरा।
3: अच्छा, तो आपको कोई देखने आ रहा है?
1: यह कोई नई बात नहीं है, 4 साल से ऐसी कितनी ही नुमाइशें लग चुकी हैं।
3: हम सब में बड़े जो हो आप।
1: तभी तो, मैं खिसकूं तो तुम्हारा नंबर आए।
3: दीदी, यह अवधारणा कहीं हमें तबाही की ओर तो नहीं ले जा रही?
1: यह तो अपना अपना सोच है, समाज ने जो दायित्व सौंप दिए वो तो हर किसी को निभाने ही है। खैर, तू इन बातों को छोड़, अंदर जाकर कुछ प्लेटें साफ करके रखा और कप भी धो देना।
3: ठीक है, जैसा तुम कहो। अच्छा, पहले ये मेज जरा अंदर रखवा दो, मेज पोछ ना होने से बड़ी गंदी लगती है।
1: इसे यहीं रहने दे, अंदर ले जाकर छिपाने से क्या होगा, हमारी मजबूरियां तो घर की चौखट पर ही दिखाई दे जाएंगी।
3: तो क्या वह हमारी मजबूरियों को ज्यादा रहने यहाँ आ रहा है?
1: नहीं री, ये तो मैं वैसे ही कह रही हूँ, सौदागर के लिए भला किसकी मजबूरियां क्या मायने रखती हैं, सौदा तो हमेशा ले दे कर ही होता है।
3: लगता है रश्मि स्कूल से आ गई।
4: आ गई भाई, क्या बात है प्रीति,
3: यहाँ आना जरा।
4: क्या है,
3: कुछ सुना तुमने? दीदी के जीवन का आज असली मोड़ आ गया है, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी।
4: मुझे पता है, उस मोड़ से दीदी को जिस रास्ते मुड़ना है मैं वो भी जानती हूँ।
1: क्या जानती है?
4: उस रास्ते पर ऐसी ढलान है दीदी।
1: हाँ हाँ, बोल बोल।
4: जहाँ नित नई नई लाशें लुढ़कती हैं।
3: ये तुम क्या कह रही हो रश्मि?
4: जो मुझे नहीं कहना चाहिए था।

0: लगता है रमा बहन जी ने तुझे सब कुछ बता दिया।
1: हाँ, जिस रास्ते पर एक दिन उनकी छोटी बहन को लुढ़का कर मौत की नींद सुला दिया था जिसने, वही कालीचरण आज तुम्हारे जीवन का सौदा करने आ रहा है।
0: रश्मि, इस वक्त तो कम से कम ऐसी कड़वी बात ना बोल।
1: तो गोया तुम भी उत्सुक हो उन श्रीमान जी के गले में वरमाला डालने को।
0: रश्मि, क्यों कुरेद रही है मेरी दुबकी हुई भावनाओं को? अब कौन सी उत्सुकता का वास्ता दे रही है मुझे?
1: तो फिर क्यों यह विष का प्याला पीने पर तुली हुई हो?
0: इसलिए कि अब जीने की चाह खत्म हो गई है। फिर पापा और अम्मा की तरफ भी तो देखना है, ना जाने कैसी कैसी उलझने सही उन्होंने यह दिन देखने के लिए। मैं नहीं चाहती मेरे ना कहने से उनके दिल पर कोई ठेस लगे।
2: लेकिन दीदी, शादी ब्याह कोई बच्चों का तो खेल नहीं, जिसके साथ जीवन निभाना है उसकी सरसरी परख तो करनी ही चाहिए।
3: शोर ना करो, देखती नहीं मेरी गोद में ये गुड़िया सो रही है, जाग गई तो फिर रोने बैठ जाएगी।
2: ये गुड़िया कहाँ से ले आई?
0: तुझे नहीं पता प्रीति, यह इन्हीं की है।
2: अच्छा,
0: बाहर के आते में कबाड़ खाने में पड़ी थी, वहां से उठा के लेके आई है।
3: ये मेरी बबली की गुड़िया है, बबली के बिना इसका मन नहीं लगता ना, इसीलिए बहुत उदास रहती है। अभी छिपके बैठी कहीं रो रही थी, मैंने पुचकार कर बड़ी मुश्किल से सुलाया इसे।
2: तो फिर अंदर जाके लेटा क्यों नहीं देती इसे?
3: हाँ ये ठीक है, बबली आएगी तब तक दो घड़ी सो लेगी।
0: चली गई। अच्छा देख प्रीति,
2: हाँ
0: भला ऐसी कौन होगी जो शादी के साथ तीन तीन बच्चों की माँ कहलवाना पसंद करे? फिर उन बच्चों की जिनकी असली माँ की मौत पर दो नंबर का सफेद पर्दा डाल दिया गया हो।
1: तो क्या इसके बावजूद भी अपने जीवन की डोर उस हत्यारे के साथ बांधने को तैयार हो?
0: हाँ, क्योंकि मैं अपनी हत्या स्वयं नहीं कर सकती।
1: अपनी हत्या वह करे जो कायर हो, तुम में क्या कमी है जो ऐसा सोचो?
0: तू नहीं जानती मेरी बढ़ती हुई आयु जहाँ पापा की रातों की नींद उड़ाने में लगी है, वहां मेरे विवाह की चिंता में अम्मा दिन दिन झुलसती जा रही है।
1: तो क्या दुल्हों का अकाल पड़ गया है?
0: नहीं, ये बात नहीं है। दुल्हों की मंडी में बोली लगाने वालों की लगाम काबू न होने से दुल्हों के भाव आकाश को छू रहे हैं। जबकि तू जानती है हमारे पापा की हालत तो पिछली पंक्ति में भी खड़ी होने की नहीं है।
1: नहीं होगी, लेकिन कालीचरण की काली छाया तो हम तुम पर नहीं पड़ने देंगी। क्यों प्रीति?
2: हाँ हाँ, हम इसका डट कर विरोध करेंगी।
0: तो तुम क्यों मेरे भविष्य को ठहरा देना चाहती हो? क्यों मुझे बिना मौत मरने के लिए?
1: दीदी।
0: हाँ रश्मि, मैं तुम दोनों के रास्ते में इस तरह पत्थर बनकर नहीं पड़ी रहूंगी। मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो हट जाने दो।
1: जरा एक दफे और कहना दीदी।
0: अरे पगली, मेरा नंबर कटेगा तभी तो तुम्हारा नंबर आएगा ना।
1: ओह दीदी,
0: अब ज्यादा ना बोल, हकीकत कभी झुठलाई नहीं जा सकती।
2: मैं समझ गई तुम्हारे पीछे क्यों मैं, यदि हमारी उपस्थिति ना हो तो शायद पापा दूल्हों की उस मंडी में खड़े रहने का साहस जुटा सकते हैं, है ना?
0: क्यों ऐसी अनचाही बातें करके मेरा मन मंथन कर रही है?
2: इसीलिए कि इस अनमे रिश्ते को रोकने का कोई दूसरा रास्ता तो निकल आए।
0: यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं।
1: इसमें भला भावनाओं में बहने की क्या बात है? आज तुम्हारे साथ यह स्थिति आई है, कल हमारे साथ भी आएगी।
2: ठहरो रश्मि, इसका सही हल मेरे पास है, मैं अभी आती हूँ।
0: अरे आज इस प्रीति को ये क्रांति की बातें कहाँ से सूझ गईं?
1: कॉलेज में जो पढ़ती है, सहेलियों के बीच बैठकर नारी सम्मान को ठेस लगाने वाली कुछ ऐसी वैसी घटनाएं सुन लेती होगी।
2: लो ये रस्सी, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देगी। क्यों रश्मि?
1: तेरे कहने का मतलब है
2: हम इस रस्सी का फंदा बनाकर तीनों अपने गले में डाल लेवे और समाज को ठेंगा दिखाकर हो जाए वो जाए।
1: ये ठीक है दीदी। दीदी, जल्लाद के हाथों से मरने से तो ये बहुत अच्छा है, तीनों मिलकर ऐसी गहरी नींद सोएंगी कि फिर न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी।
4: कौन बजा रहा है बांसुरी?
1: हमारे पापा, और कौन?
4: वो आ गए क्या?
1: वह जहाँ से बांसुरी बजा रहे हैं वहीं से उनका अलाप हमारे कानों को सुनाई दे रहा है।
4: अरे क्यों झूठ बोलती है, उन्होंने तो कभी बांसुरी हाथ में भी नहीं ली होगी।
1: तो क्या ये बेसुर के सर अपने आप ही उभर रहे हैं?
4: तेरी पहेलियां मेरी समझ में नहीं आने की, साफ साफ पता कहना क्या चाहती है?
1: जो तुम्हें सुनना पसंद नहीं है मैं पूछती हूँ अम्मा, दीदी हमारे लिए क्या ऐसा बोझ बन गई जो हम जल्दी से जल्दी इन्हें किसी गहरे गड्ढे में पटक देना चाहते हैं?
4: अनप्याही हर जवान बेटी उस समय तक अपने माँ बाप के लिए बोझ ही

0: नहीं जाती है जब तक उसके हाथ पीले न कर दिए जाएं।
1: हाथ पीले करने का यह मतलब तो नहीं कि चाहे जिसे उसके साथ बांध दो। खूनी मांग भरने वालों को कोई अपनी बेटी नहीं देता अम्मा।
0: रश्मि, ऐसी अपशकुन बोल बोलते वक्त कुछ तो सोचा होता।
1: अपशकुन की बात तो तुम कर रही हो अम्मा। क्या दीदी के लिए आपको कालू राम सेठ का वो लड़का कालीचरण ही मिला और कोई नहीं? पता है उसकी काली करतूसों से डरकर उसकी पत्नी कमला को आत्महत्या करनी पड़ी।
0: नहीं री, ऐसा तुमने कहाँ सुना?
1: यह तो हर कोई जानता है लेकिन बोलता कोई नहीं।
0: हो सकता है उसके परिवार से दुश्मनी रखने वालों ने ये बात उड़ाई हो।
1: तो क्या उन तीन बच्चों की माँ को उस पागल कुत्ते ने काटा था जो उसके जहर से अपने आप मर गई?
0: तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे हम जानबूझकर सुजाता को किसी कुएं में धकेल रहे हैं।
1: ऐसे कुमानस के साथ ब्याह रचाने से तो कुएं में धकेल देना अच्छा है।
0: कह ले और कह ले, इस वक्त ताने नहीं कसेगी तो कब कसेगी? आखिर हम बेटियां पैदा करने के गुनाहगार जो हैं।
1: रश्मि, क्यों अम्मा को रुलाने की ठान रखी है? ये तो वैसे ही मुसीबतों के जाल में उलझकर बहुत दुखी हैं।
0: इसे क्या मालूम आज हम किन दुविधाओं में जी रहे हैं। एक तरफ अपनी औलाद जो सोचते कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ हमारा समाज जो रह रहकर हमारी बदनसीबी पर पड़तालियां बजा रहा है। इनके बीच हमारी जो हालत है वो हम ही जानते हैं।
1: अम्मा, आप समझते क्यों नहीं? ऐसे समाज का क्या फायदा जो हमें कुछ दे नहीं सकता और चाहता है हम उसके लिए अपनी सारी खुशियां न्योछावर कर दें। मैं तो थूकती हूँ ऐसे समाज पर।
2: मुझे भी थूकना है। मैं कहाँ थूकूं?
0: मेरे सर पर।
2: ना ना ना, दादी माँ कहती थी जो बुरा करे उसके मुंह पे थूकना चाहिए।
1: तो अपने सास पर थूको जिसने बबली के पापा को पैदा किया।
2: वो तो कब की मर गई।
0: तो जाकर बबली के पापा पर थूक जिसके कारण तेरी ये दुर्दशा हुई।
2: हाँ, आप भी कैसी बात करती हो अम्मा। उन पे भला मैं कैसे थूक सकती हूँ? वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
3: अच्छे लगते हैं तो जाकर उनसे मिलाओ, बाहर खड़े हैं।
2: क्या, वो आ गए और मुझे पता ही नहीं चला? मैं भी कितनी पागल हूँ, उन्हीं के इंतजार में तो बैठी हूँ। मुझे तो मिलना है उनसे।
3: पहले मुंह पर घूंघट तो निकाल लो फिर जाओ।
2: ये लो, अब जाती हूँ।
3: जाओ ना।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो बहुत खराब है। अम्मा, मुझे उसके पास दोबारा मत भेजो, वो मुझे मार डालेगा। देखो उधर देखो, कैसे घूर घूर के देख रहा है, जैसे मुझे खा ही जाएगा। अम्मा अम्मा, ये वही है जिसने मुझे पीट पीट के उसे आत्मरी कर दिया था। कहता था शादी के समय तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं दिया, तो झूठा कहीं का। तू रह मुझसे। अम्मा अम्मा, इसे बाहर निकाल दे अम्मा, इसे इस मनुष्य को निकाल दे अम्मा। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी अम्मा।
0: रो मत मेरी बेटी, रो मत, अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगी। प्रीति, तू इसे अंदर ले जा।
3: चलो दीदी, अंदर आ जाओ।
1: माँ, आप इसी समाज की बातें कर रही थी ना जो उस समय चुप्पी साधे रहा जब जीजा जी इन्हें मार पीट कर घर से बाहर खदेड़ रहे थे, या उस समाज की जहाँ कुलीन घरों में भूखे भेड़ियों की भरमार लगी हुई है? अम्मा, वहाँ बेटियों की पढ़ाई और ओहदे की कीमत उन बेटी वालों से वसूली जाती है जिनकी पगड़ियां उनके पैरों में।
0: रश्मि, तेरी बातों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ बेटी। तू क्या कहना चाहती है मुझसे कुछ छिपा नहीं, पर बेटी हमारी कुछ सीमाएं हैं। हमने अपनी ओर से इसके लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर करें क्या, हर जगह हमारी गरीबी ही हमारी टांगे खींचती रही। इसलिए न चाहते हुए भी इसी रिश्ते पर सब्र करना पड़ा, और नहीं तो कम से कम लोगों की बुरी नजरों से तो हमारी बेटी बची रहेगी।
1: तो गोया लोगों की नजरों से दीदी को बचाने के लिए महापाप किया जा रहा है।
0: यही समझ ले, तुझसे बहस करना तो व्यर्थ है।
1: इसमें बहस करने की क्या बात है अम्मा, लोगों की ऐसी बुरी नजरें दीदी के बाद फिर हमें घूरने लगेंगी, तब
3: हमारे लिए किन्हीं और काले चरण को ढूंढना पड़ेगा, है ना अम्मा?
0: तुम दोनों तो बिल्कुल बेशर्म हो गई हो, कब क्या बोलना चाहिए जरा भी ख्याल नहीं रखती हो तुम।
3: ठीक है अम्मा, एक काम कर।

0: दीदी का रिश्ता तय करने से पहले हमारी चिंता तो अपने दिल से निकाल दो
1: और तसल्ली से दीदी के लिए कोई सुपात्र देखो। हम अपनी देखेंगी कि हमें क्या करना है आगे। चलो प्रीति, इस समय तुम मेरे साथ आओ।
2: लेकिन तुम जा कहाँ रही हो?
1: कहीं नहीं, अभी वापस आती हैं।
2: पर इस समय तो मत जाओ बेटी।
1: काली चरण जी साहब पधारेंगे, तब तक लौट ही आएंगे।
0: मेरी नादान बहनों को समझाना बहुत मुश्किल है अम्मा, बहुत मुश्किल।
2: मैं तो इनसे उकता गई।
0: इतनी चिंता मत करो, वक्त आने पर ये अपने आप समझ जाएंगी। फिर आज के जमाने में ज्यादा डरपोक बने रहना भी तो ठीक नहीं है। दकियानुसी विचारों को कौन मानता है? नई करवट लेकिन नारी को भी पुरानी मान्यताएं तोड़ देनी चाहिए। ये लो, सावित्री बुआ जी भी आ गई।
3: क्या बात है सुजाता, तेरी इन रश्मि प्रीति को क्या हुआ? चेहरा इनका तमतमाया हुआ कैसे? मुझे देखते ही तुनक्कर मुंह फेर लिया और उधर निकल गई।
2: अब क्या बताएं सावित्री बाई, आज की नई पीढ़ी उन बातों को सुनना ही नहीं चाहती जो उनके दिल को जरा भी कचोटती हो।
3: ऐसा फिर क्या हो गया?
0: होना क्या है बुआ जी, मेरे जीवन के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है ये उससे खुश नहीं है।
2: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सावित्री बाई, ये ठीक ढंग से नहीं कह पा रही। मैं बताती हूँ, दरअसल ये दोनों चाहती हैं कि सुजाता के लिए हमने जो वर देखा है वो दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं है।
3: ऐसा तो दिखने में कोई बुरा भी नहीं है, एकदम जवान हट्टा कट्टा कुछ सांवला है, इतनी सी तो बात है। वैसे गोरे चट्टे सुंदर सलोने दिखने वाले अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन उनमें वो मर्दानगी कहाँ जो होनी चाहिए। ऐसे मरियल से दिखते हैं कि पूछो मत। फिर दूसरी बात, हमें अपनी भी तो कुछ औकात देखनी चाहिए।
2: यही तो समझ नहीं है इन छोकरियों में।
3: भाभी यह तो शुक्र समझो, हमारी सुजाता के लिए पैसे वाले आसामी मिल गए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है वहाँ। वैसे भी कालीचरण बहुत समझदार है, हम इसे खाली हाथ भेजेंगे तो भी वह बुरा नहीं मानेगा। बस उसे तो एक ऐसी बहू चाहिए जो सुलक्षणी हो और उसके अस्त व्यस्त घर को सहेज कर रख सके, इसीलिए उसने कोई अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं देखी।
0: तभी तो मेरे भाग्य खुले हैं।
2: तू सुजाता अभी अंदर जाकर बैठ, न जाने बोलते समय शालीन शब्दों को चबा जाने की आदत कहाँ से सीख गई।
0: ऐसा मैंने क्या कह दिया अम्मा जो तुम मुझे ऐसे कह रही हो?
3: क्या बात है, मैं समझी नहीं।
2: इसकी तबीयत दो दिन से जरा ढीली चल रही है ना, इसीलिए इससे कहती हूँ अंदर जाकर थोड़ी लेट जा।
3: ये तो अच्छी बात है, भैया जी उसे लेकर आए, तब तक आराम कर ले।
0: अजी बुआ जी, मुझे क्या हुआ है जो आराम करूं? मुझे तो आपसे यह कहना है कि मुझे शादी नहीं करनी।
2: क्या, तू शादी नहीं करेगी?
0: हाँ अम्मा, मैं कोई घरों में काम करने वाली नासमझ नौकरानी नहीं हूँ जो हर किसी के यहाँ काम करने चले जाऊँ। मुझे उस सफेद पोश अमीरजादे के घर नहीं जाना जहाँ अबलाओं की सांसें उखड़ती और नित नई महफिल सस्ती है।
3: भाभी क्या यही सब सुनाने को मुझे यहाँ बुलाया था?
2: नहीं नहीं, आप इसकी बातों पर नहीं जाइए सावित्री बाई, यह अभी अपने वश में नहीं। आप तो जानती ही हैं शादी की जब भी कोई बात चली लेन देन के कारण कभी आगे नहीं खिसकी, इसलिए हमारी बातों पर इसे विश्वास नहीं हो रहा। बस और कोई बात नहीं है, दूध की जली हुई है ना, सो मुंह से बहकी बहकी बातें करने लग जाती है।
3: ओ तभी मैं सोचूं, है तो ये 10वीं पास, भला इसे ये कॉलेज की हवा कहाँ से लग गई। देख बेटी सुजाता, इस बार तुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। आज मैं तेरे लिए एक ऐसा रिश्ता लाई हूँ जो खुशियों से तेरी सारी झोली भर देगा। फिर ऐसा सुनहरा मौका एक ही बार आता है, बार बार नहीं। यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर
2: नहीं। सावित्री बाई, कोई ऐसी वैसी बात मुंह से नहीं निकालना, यह तो हमारी सबसे सयानी बेटी है।
3: इसीलिए तो आश्चर्य होता है कि इसमें ये नादानियां कहां से आ गईं।
0: बुआ जी इस भुलावे में मत रहना, मैं कोई नादान वादान नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आस पास की अनुभूतियों ने मेरे सारे ज्ञान चक्षु खोल दिए।
3: अच्छा तो अब हमारी सुजाता वो पहले वाली सुजाता नहीं रही?
0: बिल्कुल यही बात है। अब यह नहीं होगा कि मैं आपके लाए किसी मन चाहे खिलौने से खेलने लग जाऊं।
2: चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, वक्त

0: मेरे साथ समझौता करना सीख। वैसे मैं तेरी भावनाओं की कद्र करती हूँ, पर क्या करूँ, छाती पर पत्थर रखने के सिवा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता।
1: ये क्या भाभी, अभी से आपकी ममता पिघलने लग गई?
2: आपकी तरह कठोर और निष्ठुर नहीं है ना मेरी अम्मा।
1: सुजाता, ऐसी अशिष्टता कहाँ से सीख आई? ये भी भूल गई कि बड़ों के आगे कैसे बोला जाता है।
2: बुआ जी, बड़े वे हैं जो छोटों को अपना समझें।
1: तू कहना क्या चाहती है?
2: यही कि आप उस अपने काले कलूटे कालीचरण को इस गली में आने से रोक दें, वरना मेरे छोटे मुंह से कोई और बड़ी बात निकल गई तो मुझे दोष मत देना।
0: बेटी सुजाता,
2: तुम शांत रहो अम्मा, तुम नहीं जानती इन्होंने मुझे खाई में उतारने की सोची है, जिसमें दल दल के सिवा और कुछ नहीं है। यदि मैंने इसकी खिलाफत नहीं की तो मैं तो नरक में गिरूंगी, सो तो गिरूंगी। मेरे पीछे आने वाली सब बहनें मुझे जी भर कर कोसेंगी, मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसे जाल में फंस कर ना जाने कितनी ही अभागिने तड़फ तड़फ कर दम तोड़ चुकी, जिनकी कोई गिनती नहीं है। अम्मा, बहू को गृह लक्ष्मी समझने वालों का साया अब समाज से उठ गया, इसलिए शादी के मंडप की ओर भरने वाली हर लड़की को अपना भला बुरा अब खुद ही सोचना होगा।
1: देखा भाभी, इस घर की इज्जत का भगवान ही मालिक है। अच्छा हुआ अभी से पूत के पैर पालने से बाहर दिखाई दे गए। मैं इसी वक्त जाकर कालीचरण को मना कराती हूँ, यहाँ आकर उसे बेमतलब की हंसी नहीं उड़वानी। इस छोकरी ने तो हम सबकी नाक कटवाने की सोच रखी है।
3: क्या हुआ बुआ जी?
1: अपनी इस अभिमानी बहन को पूछो।
3: वो तो अभी पूछती हूँ, लेकिन आप किधर को जल्दी?
1: उस पत्थर को हटवाने जो मेरी अकल पर पड़ गया।
2: अजी बुआ जी, वो पत्थर तो हम ही हटा देते हैं, कहीं और जाने की भला क्या जरूरत है?
1: अरे तुझे तो सूझ रही है मस्खरी, और मेरा जल रहा है कलेजा। भलाई करने का क्या फल मिलता है ये मैंने देख लिया। जब तक तेरे पापा को सारे हालात न बता दूं, मैं चुप नहीं बैठूंगी।
3: अजी भुआ जी, हम मस्करी नहीं कर रही, अभी हम पापा के ऑफिस होकर ही आ रही हैं। सुजाता दीदी की इच्छा के विरुद्ध अवे कहीं नहीं जाएंगे, तभी तो कहती हूँ आपको अभी जाने की क्या जल्दी है।
1: तो यहाँ बैठी बैठी तुम्हारी इस दीदी की जली कुटी सुनती रहूं, यही ना?
2: आप भी बुआ जी क्या बच्चे जैसी बातें करती हैं। अजी, हम सब आपकी बेटियाँ हैं, और बेटियों की बात को गला बुरा माना जाता है।
1: बस बस, अब रहने दे छुटकी, तू और ये रश्मि दोनों जले पर नमक छिड़कने में बहुत होशियार हो, मैं सब जानती हूँ, मुझे बनाओ मत, मैं तुम्हारी बातों में अब नहीं आने की। भाभी संभालो अपनी इंजाइयों को, मैं तो चली।
2: जरा संभल कर, ये गली बहुत उबड़ खाबड़ है।
1: तू तो सुजाता चुप ही रह।
2: नाना बुआजी, चुप रहना बहुत खतरनाक है, देखा नहीं उन्होंने कैसे चुप्पी साध रखी है। मेरी बला से, मैं ही क्यों बोलूं, मैं भी नहीं बोलती, आप भी मत बोलिए बुआ जी, अधिक बोलना अच्छा नहीं है। दादी माँ कहती थी जो ज़्यादा बोलती है लोग उसे पगली कहते हैं, इसीलिए आप तो कुछ मत बोलिए, बोल से ही पोल खुलती है, क्यों सही बात है ना बुआ जी? आप तो बस मेरी मानिए, हमेशा के लिए शांत होने की सोचिए और घर जाके गहरी नींद सोइए, एकदम गहरी नींद।
3: देखा प्रीति, सुनीता दीदी ने वो सब कुछ कह दिया जो तुम और हम नहीं कह पाते।
2: क्या कह गई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया।
4: और तो समझेगी भी नहीं।
2: क्यों?
4: समझने वाले भी नहीं समझे तो तू क्या समझेगी?
3: अरे दीदी, समझने वाले तो समझ गए,
2: और ना समझे वो अनाड़ी, क्यों है ना?
1: अनाड़ी तो तुम लोगों के बीच फंसने से बड़े बड़े हो जाए। कैसी चरपर चरपर बोल रही है सब, मैं अब यहाँ नहीं रुकने की।
2: ठहरिए बुआ जी, एक बात सुन लीजिए।
1: मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम कौन होती हो मुझे सुनाने वाली? अपनी अम्मा मत समझना मुझे, जो चुपचाप बैठी कानों पर हाथ रखती रहे, मैं एक की सौ सुनाती हूँ।
3: ओह, तभी हमारी फूफा जी सत्यवान जी की बोलती बंद है,
2: इसीलिए बेचारे दुबके और पिचके से रहते हैं सदा।
3: चंपा और चमेली बाई भी आपके आगे कभी बोल नहीं सके, क्यों बुआ जी?
2: तभी तो दोनों चुपचाप अपने चहेतों के साथ मुंह अंधेरे निकल भागी थी।
1: इन्हें चुप कराओ भाभी, इन्हें चुप कराओ।
5: क्या हुआ सावित्री भाई, चंपा और चमेली की बात कुछ ज्यादा कड़वी लगी क्या? खैर कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए, आप जरा सी चूक गई। हमारे यहाँ कंकर मारने से पहले यदि आप यह सोच लेते कि आपका अपना घर शीशे का है

0: तो इतनी तड़ातड़ नहीं होती। खैर, इन छोकरियों के कारण आपको जो चोट पहुंची उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ।
1: वाह, चोट करे बेटियां और माँ करे मरम पट्टी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि समझती नहीं। देखती हूँ इन छोकरियों के हाथ कैसे पीले होते हैं। घोड़ी चढ़कर कौन आता है कोई बांका दूल्हा। मेरा नाम भी सावित्री बाई नहीं। हाँ,
2: कौन बताए तो हम क्या करें।

हम क्या करें। अभी आप सुन रहे थे ये नाटक, इसके लेखक थे निर्मोही व्यास और प्रतिभागी थे मंजू शिंगल, सरिता शर्मा, शीलम शर्मा, तृप्ति गुप्ता, अर्चना भटनागर और रचना श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है। श्रोताओं, इस समय दिन के 12:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना मुकेश को, फिल्म का नाम था कभी कभी। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं।

फिल्म पाकिजा में ये आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम उपकार।

0: फिल्म नया दौर में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में जयपुर से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। शेखावाटी क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना के लिए आज राज्य के हरियाणा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर के समय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। 33,379 करोड़ रुपए की इस परियोजना से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राज्य के शेखावाटी इलाकों तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी

0: पहुंचाया जाएगा। इससे चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के शहरों और गांवों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी तथा कृषि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन दोनों प्रदेशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण ही इस प्रोजेक्ट में प्रगति हुई है।
1: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखे, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से रुकी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की परस्पर सहयोग और भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे अच्छे में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहाँ राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई है। हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारे सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। यह समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन और समग्र विकास से जुड़ी हुई थी। राज्यपाल ने आज जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से देश के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। प्रदेश में लगभग 43 दिनों के लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से सभी सरकारी और निजी विद्यालय फिर से खुल गए हैं। भीषण गर्मी के कारण शिक्षा विभाग द्वारा इन छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ स्कूलों में नए विद्यार्थियों को जोड़ने और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस मुख्यधारा में लाने के लिए प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत शिक्षक वार्ड पंचों, सरपंचों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाएंगे। प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में भी अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के बाद आज से राजस्थान न्यायालय सहित राज्यभर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित जनसुनवाई फिर से शुरू हुई। अब न्यायालयों का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई, नए प्रकरणों की पेशी और अन्य न्यायिक कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। जैसलमेर में पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूआईटी मूल सागर क्षेत्र में गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना शुरू करेगा। इस योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। यूआईटी को इस योजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आज सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना दूदू क्षेत्र के महिला गांव के पास सुबह करीब 5 बजे हुई। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रही एक बस का एक्सल टूटने के कारण उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस खड्डे में पलट गई। पुलिस ने घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भिजवाया है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए राज्यभर से 3,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान कुल 75% उपस्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। बहनें सुनेगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं संध्या शर्मा ओझा और कोमल पुरोहित।

0: महिला जगत सुनने वाली हमारी सभी रेडियो सखियों को संध्या शर्मा ओझा का
1: और कोमल पुरोहित का
0: प्यार भरा नमस्कार।
1: पहले महिला जगत कार्यक्रम में हम अपनी महिला सखियों के लिए जीवन के हर एक पहलू को लेकर आते हैं, चाहे वो हमारी सखियों का स्वास्थ्य हो, परिवार से जुड़ी बातें हो या फिर सामाजिक मुद्दे हो।
0: सखी घर हो या परिवार हो या बच्चों के स्वास्थ्य की बातें हो, यहाँ हर बात पर हम आपसे बात करते हैं। शायद इसीलिए हमारी सभी रेडियो सखियां कोमल हमसे इतना जुड़ाव जो महसूस करती हैं।
1: और संध्या करे भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो महिला जगत कार्यक्रम है उसका उद्देश्य भी तो यही है ना कि जहाँ हम जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा ध्यान जो रखते हैं।
0: बिल्कुल कोमल, कोमल और सखियों हमारी, आप सभी कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आगाज कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम के प्रथम गीत का। जी हाँ, जो आगे भी आपके लिए हम इसके बाद बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम में हमारे साथ।
2: जिंदगी

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: तीनों बारिश यानी तपती गर्मी से राहत, भीगी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, बच्चों की कागज की नाव और गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की प्याली। सच कहें तो बरसात अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आती है, लेकिन कहते हैं ना, हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है और अपनी जिम्मेदारियां भी। बरसात की ये बूंदें अगर सुकून देती है तो थोड़ी सी लापरवाही हमें बीमार भी कर सकती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे बरसात और सेहत, मानसून से फैलने वाले सारे जनजनित रोग और उनसे बचाव की।
1: कोमल, बरसात शुरू होते ही हम छाता तो साथ याद रखते ही हैं कि हमें साथ में रखना है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा का जो छाता है ना, उसे अक्सर भूल जाते हैं सखियों, और यही छोटी सी भूल कई बार बड़ी परेशानी बन जाती है। अक्सर लोग कहते हैं हम तो सिर्फ पानी ही पीते हैं, फिर जल जनित रोग कैसे हो जाते हैं? आखिर ये जल जनित रोग होते क्या है कोमल?
0: बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं संध्या, तो जब पीने का पानी या खाने की चीजें गंदे पानी के संपर्क में आ जाती हैं तो उनमें कीटाणु पनपने लगते हैं, या और यही जो कीटाणु है वो हमारे शरीर में पहुंचकर जो है दस्त लगा देते हैं, उल्टी हो जाती है, हैजा है, टाइफाइड है, पीलिया और पेट के जो संक्रमण है जैसी बीमारियों का कारण भी बन जाते हैं। यानी बीमारी बारिश से नहीं बल्कि गंदे पानी और लापरवाही से फैलती है।
1: कई बार बारिश के बाद नालियों का जो पानी है वो पीने के पानी से भी मिल जाता है कोमल, और कहीं ना कहते हैं कि जो पानी की टंकी है ना वो खुली रह जाती है कभी कभार, तो कई कहीं कुछ सड़क के किनारे ऐसा है कि जो खाना मिलता है जैसे कि हमें गोलगप्पे, चाट और ये सब हम लापरवाही में या ये कहें कि इस मौसम में खा लेते हैं, तो ऐसे में सखियों पेट की बीमारियां हम सड़क से उठाकर अपने पेट और पेट से अपने घर तक ले आते हैं।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले असर किस पर पड़ता है संध्या?
1: हमारे बच्चों पर।
0: बिल्कुल, साथ में फिर बुजुर्गों पर भी पड़ता है और गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ता है। इसीलिए जो घर की महिलाएं हैं उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है बहनों, क्योंकि वो पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी और वो हमें बताएगी संध्या।
1: बिल्कुल कोमल, सखियों जैसे कि हम आप सभी को पता है कि उबला हुआ पानी पीते हैं, फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं, अगर पानी की शुद्धता पर जरा भी संदेह आपको हो रहा है या मशीन खराब हो जाए तो आप पानी को उबालकर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, सीधा पानी ना पीजिएगा, और पानी को हमेशा ढककर रखें, ये हम सभी को ही पता है। और कई बार क्या होता है कि हम पानी तो साफ भर लेते हैं लेकिन उसे खुला छोड़ देते हैं ना कोमल, और गलती से खुला वो छूटा पानी जिसमें मक्खी या कोई भी उड़ते कीट पतंगे उसमें छू जाते हैं तो उससे भी पानी में दूषित हो जाता है पानी, और उससे हमें बीमार होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ में बरसात में बाहर की, जैसे कि आपने बात की गोलगप्पों की, तो वही है कि बरसात में बाहर की चाट, गोलगप्पे, कटे हुए फल या लंबे समय से खुला

0: रखा भोजन जितना हो सके उससे दूरी बनाए रखें बहनों। मौसम का मजा घर में ताजा और गर्मा गर्म पकौड़े या भोजन करने में ही आता है। और एक आदत और है जो सबसे आसान भी है और सबसे जरूरी भी, जो अक्सर बच्चों में मतलब पाई जाती है, बहुत कम है ये आदत, जैसे कि खाना खाने से पहले और जो है शौचालय के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ जरूर धोना है हम सबको।
1: सखियों, अगर घर में किसी को बार बार दस्त, उल्टी या तेज बुखार, साथ ही पेट में दर्द, ऐसी कमजोरी कुछ भी महसूस होता है तो इंतजार नहीं करें, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं सोचना है। समय पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और डॉक्टर से जरूर परामर्श लेकर अपना इलाज करवाना है।
0: बिल्कुल, और तब तक शरीर में पानी की कमी ना होने दें, डॉक्टर की सलाह के साथ ORS का घोल और पर्याप्त साफ पानी शरीर को संभालने में मदद करता है। और साथ में बरसात का मौसम खुशियों का मौसम है बहनों, तो इसे बीमारियों का मौसम बनने से रोकना हमारे अपने हाथ में है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सफाई और थोड़ी सी जागरूकता पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है, क्योंकि बीमारी आने के बाद इलाज करवाना समझदारी नहीं बल्कि बीमारी आने से पहले बचाव करना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
1: और अब इसी खूबसूरत संदेश के साथ आइए बारिश के फुहारों का आनंद लेते हैं एक मधुर गीत के साथ।

0: मानो गर्मियों की तेज धूप भले ही हमारे कदमों की रफ्तार कम कर दे, लेकिन हमारी त्वचा पर इसका असर सबसे पहले दिखाई देता है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल हमारी त्वचा को स्वस्थ और दमकती हुई बनाए रख सकती है। तो आइए इसी विषय पर आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, गर्मी में त्वचा की देखभाल। और जो विषय जो ये प्रोग्राम देंगी वो है डॉक्टर निकिता गुप्ता जी, और जिनकी बातचीत हो रही है श्रीमती बरखा थानवी जी से, और संयोजन करता है श्री अमित सिंह जी।
1: नमस्कार श्रोताओं, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना, टैनिंग और त्वचा संबंधी कई चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में त्वचा की सही देखभाल बेहद आवश्यक हो जाती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निकिता गुप्ता। डॉक्टर निकिता, स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: थैंक यू बरखा जी, नमस्ते सभी श्रोताओं को।
1: गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है और हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है इस गर्मी का पड़ता है, और उसमें भी जो शरीर की सबसे सेंसिटिव जो अंग है वो होती है त्वचा, यानी कि हमारी स्किन, और स्किन के ऊपर गर्मी का बहुत इफेक्ट रहता है। तो डॉक्टर निकिता, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस गर्मी में, जबकि मौसम बदल रहा है, गर्मी भी कई तरह के रूप ले रही है, तो ऐसे में हमें अपने शरीर का क्या ध्यान रखना चाहिए?
2: आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली गर्मी के मौसम में हमें अपने शरीर का, स्वास्थ्य का, इसको कूल रखना चाहिए, जिससे हम डिहाइड्रेशन से बचें
1: जी,
2: क्योंकि गर्मी में आपको पता है हीट स्ट्रोक होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब बात यह है कि हमें इनका बचाव कैसे रखना है। तो सबसे पहले स्किन को अपने हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। खूब पानी पिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए, आपको प्यास लगे ना लगे, बट पानी का सेवन अपना नियंत्रण रखें
1: जी।
2: देसी ड्रिंक्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओरल इलेक्ट्रोलाइट्स, नींबू पानी, लस्सी, आम पन्ना जैसी चीजें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और बिल्कुल एक बात और कि कैफीन से बचें। कैफीन यानी चाय, कॉफी, ऐसी चीजों से जरूर बचें, क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। खान पान में हम क्या बदलाव करें, इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हल्का खाना खाएं, क्योंकि गर्मियों में हमारा डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, तो जो हैवी खाना है, तला भुना खाना है, जंक फूड है, इसको डाइजेस्ट होने में दिक्कत आती है। खाने पीने में अपने फल सब्जियां इंक्लूड करें जिनमें पानी ज्यादा हो
1: जी,
2: जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ऐसी चीजें डाइट में जरूर शामिल करें।
1: यानी कि जो मौसमी फल हैं,
2: हाँ,
1: जो हमें इस समय उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें ज्यादा लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर निकिता, ये तो हुआ एक कंप्लीट हमें अपनी बॉडी का क्या ध्यान रखना चाहिए गर्मी के दौरान, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज विशेष रूप से हमारी स्किन की। तो स्किन की रखरखाव के लिए क्या ऐसी सावधानियां हैं, क्या ऐसे मेथड्स हैं जो हम अपना सकते हैं जिससे कि त्वचा को नुकसान ना पहुंचे?
2: बिल्कुल। अब स्किन की अगर अपन बात करें, तो धूप में निकलने से 20 से 25 मिनट पहले आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं
1: जी,
2: चाहे 30 SPF, 50 SPF या ऑनवर्ड्स, मगर सनस्क्रीन के बिना बाहर ना निकले। आंखों के बचाव के लिए आप सनग्लासेस पहने, अपने फेस को कवर करें और उसके बाद ही बाहर निकले। सही कपड़े पहने, जैसे कि कॉटन, जो ब्रीदेबल होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट कलर्स के कपड़े पहने। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि डार्क कलर्स पहनने से हीट रेस ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो हमें कोशिश करके लाइट कलर्ड कपड़े पहनने चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: और पीक धूप में बाहर ना निकले 12 से 4 बजे तक, जो कि बीकानेर में पीक धूप रहती है, उस टाइम तापमान बढ़ा हुआ रहता है, यूवी रेज ज्यादा सर पर होती हैं, तो अवॉइड करें कि 12 से 4 अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले
1: जी। डॉक्टर निकिता, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल में लिया, हमें सनस्क्रीन के बारे में बताया। सनस्क्रीन हम बहुत सुनते हैं, इसका बहुत एडवर्टाइजमेंट भी रहता है, गर्मी में सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सनस्क्रीन आखिर होता क्या है और वो हमें कैसे बेनिफिट हमारे

0: स्किन को देता है।
1: सनस्क्रीन हमारी त्वचा को जो खतरनाक यूवी रेज हैं, जो यूवी ए यूवी बी दो टाइप की रेज निकलती हैं सन की, उनसे बचाता है। ठीक है, अब ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचाता है? यूवी ए रेज जो होती हैं, ये हमें समय से पहले बूढ़ा नहीं होने देती, मेरा मतलब है कि एंटी रिंकल्स के लिए काम करती हैं।
0: जी।
1: और यूवी बी रेज ये हमारी त्वचा को काली होने से बचाती है, यानी कि जैसे टैनिंग या फिर पिगमेंटेशन जो हमारे शरीर में होते हैं वो यूवी बी रेज से होते हैं।
0: जी।
1: तो हमें इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं वो यूवी ए और यूवी बी दोनों से ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो।
0: और ये क्या लिखा होता है जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में?
1: ये इसमें इंग्रेडिएंट्स जरूर लिखे होते हैं, मगर वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आम जनता के लिए समझना मुश्किल है, तो ये आपको आपका डॉक्टर ही अच्छे से बता सकता है कि आपको कौन सा सनस्क्रीन कितना अमाउंट में कौन सा एसपीएफ इस्तेमाल करना चाहिए,
0: क्योंकि सभी व्यक्तियों की जो स्किन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है।
1: बिल्कुल, ये सनस्क्रीन जो होते हैं ये ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, सबके लिए अलग अवेलेबल है।
0: Okay.
1: जैसे कि जेल बेस्ड आते हैं ऑयली स्किन के लिए, मैट फिनिश सनस्क्रीन आते हैं, जो ड्राई के लिए होते हैं वो थोड़े ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन होते हैं। तो ये आम जनता को ऐसे डायरेक्ट खरीदने पर नहीं समझ आ सकते हैं।
0: जी।
1: तो इसी के लिए ही आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको सनस्क्रीन लेना चाहिए।
0: और जो हम डायरेक्ट लेते हैं क्या वो उतने ही इफेक्टिव होते हैं जो हम कंसल्टेशन के साथ यूज करें?
1: नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता चल सकता है कि आपकी स्किन को कौन सा सूट कर रहा है और कौन सा नहीं।
0: यानी कि हमें सनस्क्रीन भी डॉक्टर से परामर्श करके फिर ही खरीदना चाहिए, अपने जो पैसे हैं उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और बात करिए आपने एसपीएफ की, तो क्या एसपीएफ भी इसी तरीके से डॉक्टर ही बता सकता है कि कितनी गर्मी में किस तरीके का एसपीएफ या कैसे एनवायरमेंट में कितना नंबर्स का एसपीएफ लेना चाहिए?
1: बिल्कुल, जैसे नॉर्मल अमूमन मार्केट्स में एसपीएफ 15 से चालू हो जाते हैं, तो 15 वाला जो एसपीएफ है आपको वो यूवी रेज से 90% तक कवरेज दे पाएगा। फिर अगर अपन ऊपर चलें 30 SPF तो वो आपको 95% कवरेज दे पाएगा, 50 SPF 98% कवरेज दे पाएगा। तो जैसे जैसे SPF की मात्रा बढ़ती है आपका कवरेज जो है प्रोटेक्शन का वो है वो आपका बढ़ता चला जाता है। और ज्यादातर लोग जब सुबह निकलते हैं एक बार अपना सनस्क्रीन लगा के निकल जाते हैं, बट कोई भी सनस्क्रीन 4 से 5 घंटे से ज्यादा आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता,
0: तो हमें उसे रीअप्लाई करना
1: उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम सुबह करके निकले हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने हमें दी सनस्क्रीन के बारे में, क्योंकि सनस्क्रीन का एक मिथ कह लीजिए, बच्चे हैं युवतियां हैं सब लोग जाकर बाजार से अपने अनुसार ही 50 SPF एक स्टैंडर्ड मानकर सनस्क्रीन खरीद लेते हैं, लेकिन आपने ये बहुत बखूबी हमें बताया कि सनस्क्रीन भी डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही यूज करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर स्किन।
1: बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, जो महिलाएं सोचती हैं हम घर में ही हैं, हम कहीं पे भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सनस्क्रीन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही है सन प्रोटेक्शन।
0: राइट।
1: तो जो घर के अंदर लेडीज हैं उनको भी सनस्क्रीन लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जो घर के बाहर निकल रही हैं। वो SPF कम वाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो खिड़कियां होती हैं उनसे भी आपकी लाइट्स तो सनरेज आती ही आती हैं।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उनसे भी ब्लू रेज निकलती हैं, तो ओवरऑल सारी ही रेज जो हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करने में पूरा पूरा योगदान रखती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बेटर है कि जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, उन सभी को ही सनस्क्रीन यूज करना इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल। इसी से मेरा दूसरा सवाल है कि सनस्क्रीन के लिए एक आम धारणा है कि जो यूज करते भी हैं वो सिर्फ फेस पर उसे यूज करते हैं या नेकलाइन तक यूज कर लेंगे, तो हम इसे और हैंड्स पर या कैसी जगह पर सनस्क्रीन लगा सकते हैं, या एक जैसी जगह पर हम एक जैसा ही सनस्क्रीन लगा सकते हैं?
1: बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही अलग होती हैं। एक तो जो भी हमारा एरिया एक्सपोज हो रहा है वो सारा सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट होना जरूरी है, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे चेहरा हो, चाहे गर्दन हो। ठीक है, अब अपने जो चेहरे की और गर्दन की स्किन होती है वो कंपैरेटिवली सेंसिटिव होती है हमारी बाकी बॉडी स्किन से, तो जो सनस्क्रीन फेस के आते हैं वो सेंसिटिव स्किन के अनुसार बने हुए होते हैं। ठीक है, और वो थोड़े से अगर अपन बात करें किफायती तो वो थोड़े महंगे पड़ते हैं अगर अपन नॉर्मल बॉडी सनस्क्रीन की बात करें।
0: जी।
1: तो मार्केट में बॉडी सनस्क्रीन लोशंस अलग अवेलेबल हैं, वो ज्यादातर लोशन बेस्ड में होते हैं, तो वो कम क्वांटिटी में लगते हैं तो वो इकोनॉमिक भी पड़ते हैं।
0: जी।
1: अगर हम फेस का ही सनस्क्रीन बॉडी पे लगा रहे हैं तो ना तो वो इतना प्रोटेक्ट कर पा रहा है और वो आपको कॉस्टली भी पड़ रहा है।
0: जी।
1: और यही अगर अपन बॉडी का सनस्क्रीन

0: फेस पे लगा लें, तो वो जो हार्ड स्किन के लिए बना है वो हम सेंसिटिव स्किन पे यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में सही नहीं है।
1: बिल्कुल, ये भी बहुत ही उपयोगी बात आपने हमें बताई कि सनस्क्रीन जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं और उसे हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। डॉक्टर निकिता, एक और चीज आजकल बहुत प्रचलन में है और युवाओं में स्पेशली सब जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें आप बताइए कि डे एंड नाइट क्रीम ये क्या होती है और ये कितनी कारगर है और ये क्या अलग अलग होती है, इन्हें किस समय पर लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये डे और नाइट क्रीम दोनों ही अलग होती हैं और काफी असरदार भी होती हैं। आइए समझते हैं इन दोनों को कैसे और कितनी देर तक लगाना चाहिए। अब डे क्रीम
1: जी,
0: दिन के समय अपनी स्किन धूप, पॉल्यूशन, मिट्टी और एसी के बदलते तापमान से लड़ती है, इसलिए डे क्रीम का मुख्य कारण प्रोटेक्शन होता है। ये धूप और पॉल्यूशन से स्किन ड्राई होने से बचाती है, 90-95% तक असरदार होती है। अगर हम बात करें डे क्रीम की तो ये अलग इस प्रकार होती है कि इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो हमारी स्किन धूप से, पॉल्यूशन से या जैसे मैंने बताया एसी के तापमान जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए बनी होती है। इनके अंदर ज्यादातर विटामिन सी या अपना एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस थोड़ा सा एसपीएफ का अमाउंट ऐड होता है, तो दिस इज योर डे क्रीम
1: जी।
0: अब अपन कई बार सोचते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी एसपीएफ है
1: जी,
0: तो हम अपने ऊपर से सनस्क्रीन ना लगाएं, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें एसपीएफ की मात्रा बहुत कम होती है, तो जो भी डे क्रीम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही हम बात करें नाइट क्रीम्स की, तो नाइट क्रीम्स में एकदम ऑपोजिट है, हमारी जो स्किन है वो धूप या पॉल्यूशन से लड़ नहीं रही है, तो उस टाइम हमारी जो स्किन है वो रिपेयर मोड में चली जाती है, तो हमें इसे नरिश करना जरूरी है। तो जो नाइट क्रीम के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होंगे रेटिनॉल्स, हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड्स जैसी चीजें, और इनमें एसपीएफ नहीं होगा,
1: ये तो, सिर्फ हाइड्रेशन के लिए,
0: हाँ ये सिर्फ रिपेयर करने के लिए होती हैं। तो जो नाइट क्रीम्स हैं वो नाइट में इस्तेमाल की जाए और जो डे क्रीम्स हैं वो डे में इस्तेमाल की जाए। और अगर अपना इतना स्किन केयर हम लोग नहीं कई बार कर पाते कि हम सुबह एसपीएफ कर रहे हैं, फिर दिन में हम डे क्रीम कर रहे हैं, रात में हम नाइट क्रीम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद सब जने अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, तो अगर छोटा सा मैं टिप दूं तो आप मॉर्निंग में मॉइस्चराइजर लगाकर ऊपर कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर हल्का लगाकर ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हैं और नाइट में कोई भी सीरम लगाकर भी सो सकते हैं विद द एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर या कुछ भी इस तरीके का, तो आपको अलग अलग तरीके की डे क्रीम या नाइट क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: तो क्या इतना भी सफिशिएंट है?
0: बिल्कुल, इतना भी सफिशिएंट।
1: और एक शब्द और आजकल काफी प्रचलन में है, हम सुनते हैं टोनर, ये टोनर क्या चीज है?
0: टोनर हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको टोनिंग करने में हेल्प करता है। जैसे हम स्किन केयर में आजकल सीटीएम करते हैं, सीटीएम इज क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, दैट शुड बी फॉलोड बाय सनस्क्रीन एट द एंड।
1: ओके,
0: तो टोनर इतना मैंडेटरी पार्ट नहीं है, अगर आप टोनर स्किप करके मॉइस्चराइज करके और फिर लगा रहे हैं तो भी स्किन केयर डेली रूटीन में सफिशिएंट है। टोनर इज अ ऑप्शन, ये स्किन को थोड़ा सा वेट रखेगा जिससे आप जब मॉइस्चराइज कर रहे हो तो आपका स्किन लॉक हो सके।
1: तो ये क्या पानी से क्लेंस करने का एक विकल्प है?
0: बिल्कुल।
1: और सीरम में और टोनर में क्या डिफरेंस रहता है?
0: सीरम और टोनर से बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। सीरम को आप कंपेयर कर सकते हो अपने नाइट क्रीम से।
1: अच्छा,
0: क्रीम्स और सीरम्स में ये डिफरेंस होता है, जो सीरम होते हैं वो क्रीम्स की कंसेंट्रेटेड फॉर्म्स होते हैं, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं रेटिनॉल, पेप्टाइड्स, हाइलुरोनिक, ये सीरम्स में बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, तो वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म है, तो वो वन ड्रॉप भी अगर आप लगाते हो तो स्किन को वो अच्छे रिपेयर करने में हेल्प करता है।
1: ठीक है,
0: इसीलिए मैंने कहा अगर रात को आप नाइट क्रीम नहीं भी लगा रहे, सिर्फ सीरम लगा के और सिर्फ एलोवेरा जेल ऊपर से लगा के सो रहे हो, तो वो आपका नाइट क्रीम का ही काम कर रहा है।
1: डॉक्टर निकिता ने हमें बखूबी बताया कि हमारा स्किन रूटीन क्या होना चाहिए और कौन सी चीज हमें पहले और बाद में अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी दिन में और कौन सी रात में अप्लाई करने से आप जो है एकदम परफेक्ट स्किन पा सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ ऐसी बातों की ओर जो कि विशेषकर कुछ महिलाओं को प्रभावित करती हैं। जैसे कि हम बात करें यदि प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के समय जो त्वचा है वो अलग प्रकार की जो अटेंशन है उसकी उम्मीद रखती है और हमें उसका अलग से ध्यान रखना होता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारी जो ऐसी श्रोताएं हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो प्रेगनेंसी के समय किन बातों का ध्यान रखें?
0: प्रेगनेंसी में कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स से बचे रहने के लिए जरूरी है कि हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट जब भी यूज कर रहे हैं तो उसका लेबल जरूर पढ़ें, इनसे बचे, जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन, ये तीन चार इंग्रेडिएंट

0: ऐसे हैं जो हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी काम में नहीं लेने चाहिए.
1: जी,
0: जो बिल्कुल सेफ है इंग्रेडिएंट्स वो है विटामिन सी, हाइलुरोनिक, नायासिनामाइड, ग्लाइकोलिक. अब इतना याद रखना नॉर्मल पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे नाम याद करना भी इम्पॉसिबल है. तो प्रेगनेंसी में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल कीजिए.
1: जी डॉक्टर निकिता, ये तो हुई बेसिक हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, पर उस दौरान हमें कुछ ज्यादा पिगमेंटेशन या झाइयां पड़ना या इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो ज्यादा उजागर होती हैं, तो इसके लिए आप विस्तार से अगर हमारे श्रोताओं को बताना चाहें तो क्या सलूशन हो सकता है?
0: बिल्कुल, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से चेहरे पर, खासकर गालों पर, माथे पर एक दाग धब्बे जैसी चीजें आ जाती हैं, जिसको हम मेलाज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं.
1: जी,
0: तो इनसे बचने के लिए जैसे कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि रोजाना मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड. ये दोनों चीजें मैंने पहले नहीं बोली थी. ये चीजें, ये जो है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से ये आपके बच्चे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते.
1: जी, लेकिन इन सब बातों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और फिर ही कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि जो माँ है और जो बच्चा है उन दोनों को ही नुकसान ना पहुंचे. जब हम स्किन रूटीन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फेस को वॉश करना, जो आपने हमें सारे क्रीम्स के बारे में बताया, सीरम के बारे में, टोनर के बारे में. तो एक ये जो भ्रांति कह लीजिए, हमारी जो पुरानी दादी नानी तो साबुन से भी मुंह धो लेते थे, फिर नए बच्चे हम लोग हुए, हम फेस वॉश के बिना मुंह नहीं धोते, अगर नहीं है खत्म हो गया है तो भी हम साबुन यूज नहीं करेंगे. तो ये किस हद तक सही है या गलत है, कि किसका प्रयोग करना उचित है?
0: बिल्कुल, एक्चुअली ये दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जो फेस वॉश, क्लिंजर जो मार्केट में मिल रहे हैं, ये जो बनाए जा रहे हैं ये सेंसिटिव स्किन के लिए बनाए जा रहे हैं. और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है और अपनी बॉडी की स्किन नॉर्मल होती है.
1: जी.
0: तो जो साबुन में या सोप में इंग्रेडिएंट्स हैं वो हार्श हैं कंपैरेटिवली, तो वो हार्श चीज अगर हम अपने फेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा. तो जो सोप है वो हमारी बॉडी के लिए बनी है, और जो क्लिंजर फेस वॉश है वो माइल्ड है, वो हमारे फेस के लिए ही बने हैं. आजकल अगर जैसे कई जने अपने पुराने लोग हैं या बड़े लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम एक ही सोप से फेस भी धो लें या बॉडी भी.
1: जी
0: ठीक है. तो अगर हमें, जो बड़े लोग हैं जो फेस वॉश नहीं यूज करना चाहते हैं, तो वो ग्लिसरिन बेस्ड सोप्स जो है मार्केट में अवेलेबल वो यूज कर सकते हैं, जो उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं.
1: अब हम आते हैं घर के बच्चों की तरफ, टीनेजर्स की तरफ. उन्हें गर्मी के मौसम में पिंपल्स या दाग धब्बे जैसी जो समस्याएं हैं वो बहुत परेशान या इरिटेट करती हैं, तो उनके लिए स्पेशली आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, कि बच्चे जो ट्यूशंस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, टीनेजर्स जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं?
0: टीनेजर्स यानी कि 13 से 19 साल की उम्र में पिंपल्स और दाग धब्बे होने की एक बहुत ही आम नॉर्मल सी बात है.
1: जी.
0: इस उम्र में शरीर में हार्मोनल्स में बदलाव आते हैं और वो तेजी से ही आते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. ज्यादा ऑयल और मिट्टी मिलकर पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पिंपल्स और बाद में उनके दाग धब्बे बन जाते हैं. तो हमें जो सही स्किन केयर रूटीन, जो रोजाना का हमारा नियम है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहला कि हम सही फेस वॉश चुनें, दिन में 2 बार फेस वॉश करें, और जो पिंपल्स वाले फेस वॉश होते हैं उनमें ज्यादातर सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल परोक्साइड ये पाया जाता है, तो ये हमारे भर्ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. तो फेस वॉश ऐसा चुने जो आपके ऑयल, जो ग्लैंड हैं उसमें से ऑयल सिक्रीशन को कम करे.
1: जी.
0: दूसरा, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करें. हमारे को एक भ्रम रहता है कि क्योंकि हमारी ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है. जबकि अगर हम ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारे पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना जरूरी है, जिससे कि वो पोर्स को लॉक कर दे. तो ये चीज कोई भी बच्चा नहीं समझ पाता है.
1: डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए, और जैसा कि अभी आपने स्किन केयर रूटीन को बहुत ही डिटेल में भी बताया, तो एक्चुअल में हमें फॉलो तो वही चीज करनी है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर उस स्किन रूटीन को हम फॉलो करते हैं तो शायद हमें कोई ज्यादा स्किन संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी. अब यदि हम बात करें न्यूट्रिशंस की, जो हम बॉडी में इनटेक लेकर अपनी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आ सकते हैं, यानी कि हमारे खानपान की, तो ऐसा क्या खानपान होना चाहिए हमारा जो कि हमारे त्वचा के लिए यूजफुल हो?
0: ये एक तरीके से समराइज ही होगा, जैसे

0: मैं आपको हर पॉइंट के बाद बता रही हूँ कि जैसे हाइड्रेशन है, पानी है, 3 से 4 लीटर पानी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम जितना पानी पीते हैं फिर जितना हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो जो भी बॉडी के हेवी टॉक्सिन्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं
1: जी।
0: तो बॉडी अंदर से क्लींस हो जाती है
1: बिल्कुल।
0: और हम लोग क्या करते हैं, आजकल एसी में बैठते हैं, पानी ज्यादा नहीं जरूरत होती है तो हम लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना नॉर्मल वाटर ही है बॉडी डिटॉक्स करने के लिए
1: जी।
0: दूसरा खाने पीने में जैसे मैंने बताया कि तेल तली चीजें, शुगरी प्रोडक्ट्स, इनको अवॉइड करें क्योंकि ये आपको एजिंग में भी लाती है, पिंपल्स भी होने के पूरे पूरे चांसेस। तो जो वॉटरी प्रोडक्ट्स हैं या फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इनका ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे आप खाने से पहले एक प्लेट अच्छा सा सलाद खा सकते हैं फिर खाना खाएं, दही छाछ ज्यादा लें और जैसे मैंने बताया आपको तरबूज खरबूजा ये सारी चीजें ज्यादा लें, तो क्योंकि व्हाट यू ईट इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्किन ओनली
1: जी।
0: तो पहले के जो लोग थे और जो अब के खान पान है हम लोगों का उसमें हम सभी को पता है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गए हैं, पहले खाना सिंपल हुआ करता था, आजकल खाना फैंसी होता है
1: बिल्कुल।
0: तो पहले के लोग उतने ज्यादा बूढ़े नहीं दिखते थे, विदाउट मेकअप भी वो अच्छे लगते थे
1: जी।
0: और आजकल हम सबको मेकअप वियर करना ही पड़ता है
1: तो वो जो नेचुरल स्किन ग्लो है वो आप जो अपने खाने में जितनी न्यूट्रिएंट्स रखेंगे वो उतना ही बरकरार रहेगा। तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि त्वचा की जो देखभाल है इस गर्मी के अंदर बहुत अच्छे से कर सके?
0: मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले खूब सारा पानी पिए, अपने बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएं, दूसरा फल सब्जियां सादा हल्का खाना खाएं और कोई भी दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने गर्मियों में त्वचा की देखभाल से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझाव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हमें विश्वास है कि आपकी सलाह अपनाकर श्रोता अपनी त्वचा को स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाए रख सकेंगे। आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर निकिता गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच बरखा जी।
2: सखियों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता गर्मी में त्वचा की देखभाल विषय पर डॉक्टर निकिता गुप्ता से श्रीमती बरखा थानवी व्यास जी की बातचीत और संयोजन था अमित सिंह जी का।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: मैं वो कहते हैं, बेटी जब घर में आती है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आती है।

0: उसकी किलकारियों के साथ ही माता पिता के मन में कई सपने भी जन्म लेते हैं, अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य, आत्मनिर्भर जीवन। लेकिन इन सपनों के साथ एक चिंता भी होती है, समय आने पर आर्थिक तैयारी कैसे होगी। इसी सोच के साथ आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना की जो छोटी छोटी बचत के माध्यम से बेटियों के बड़े सपनों को मजबूत आधार देने का प्रयास करती है, सुकन्या समृद्धि योजना।
1: कोमल, आज के समय में हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी को शिक्षा और आगे बढ़ने का हर अवसर मिले। ऐसे में समय पर शुरू की गई बचत भविष्य में बहुत सहायक बन सकती है। सखियों, अक्सर हम सोचते हैं कि बचत तब करेंगे जब आमदनी ज्यादा होगी, लेकिन सच तो यह है कि बचत की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं बल्कि अच्छी आदत से होती है। यही आदत आगे चलकर बड़ी ताकत बन जाती है।
0: बिल्कुल, और बेटियों के नाम से खोली जाने वाली एक ये है, ये जो योजना, ये बहुत छोटी बचत करने की योजना है। इसमें माता पिता या अभिभावक बेटी के भविष्य के लिए नियमित रूप से राशि जमा करवा सकते हैं, यानी हर महीने या हर साल अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ी थोड़ी बचत, और धीरे धीरे वही बचत बेटी की पढ़ाई या भविष्य की जरूरतों में काम आ सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसी योजना

0: आती है।
1: बिल्कुल, और बेटियों के नाम से खोली जाने वाली एक ये है, ये जो योजना, ये बहुत छोटी बचत करने की योजना है। इसमें माता पिता या अभिभावक बेटी के भविष्य के लिए नियमित रूप से राशि जमा करवा सकते हैं, यानी हर महीने या हर साल अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ी थोड़ी बचत, और धीरे धीरे वही बचत बेटी की पढ़ाई या भविष्य की जरूरतों में काम आ सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसी योजनाओं की प्रक्रिया बहुत कठिन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
0: जी हाँ सखियों, बेटी के 10 वर्ष की आयु तक उसके नाम से खाता खुलवाया जा सकता है। यह डाकघर या अधिकृत बैंकों में इस खाते को आप खुलवा सकते हैं, और खाता खुलवाने के लिए ज्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती। बस बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और आवश्यक संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: लेकिन संध्या, मुझे लगता है इस योजना का सबसे बड़ा संदेश केवल बचत नहीं है, ये योजना एक ये विश्वास भी देती है कि बेटी का भविष्य परिवार की प्राथमिकता है।
0: तो चलिए सखियों, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की तरफ।

0: सखियों कहते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हमारे विचारों को नई दिशा दे और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। हमें विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में साझा की गई जानकारियाँ और विचार आपके लिए उपयोगी रहे होंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक नई सोच का संचार करेंगे।
1: बहनों, याद रखिए, जीवन की व्यस्तताओं के बीच अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताना, सही जानकारी प्राप्त करना और हर दिन कुछ नया सीखते रहना, यही छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती हैं।
0: इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और जीवन के हर पड़ाव पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें, आज के कार्यक्रम में मुझे संध्या ओझा को
1: और कोमल पुरोहित को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया से नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक

0: नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सी पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर

0: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
1: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये आवाज़ थी यशुदास और हेमलता की। फिल्म का नाम था चित्तचोर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम मेरे हम सफ़र।

यह आवाज थी महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम था बंधन। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम शोर।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं।

यशोदास को अभी आपने सुना फिल्म नैया में। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम संत ज्ञानेश्वर।

फिल्म संत ज्ञानेश्वर में लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलमारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। शाम 5 बजे से दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है, संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं,

0: बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की इनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संवाद के माध्यम से समाधान मंत्र का।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो जाएगी। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत

0: तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत द्वारा वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों ने 66 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 1450 हो गई है। हजारों लोग घायल हुए और कई लापता हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत ना तो नई है और ना ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। इस समय संध्या के 5:05 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: टेक्नोलॉजी भी क्या कमाल की चीज है दोस्तों। सब कहते हैं पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, लेकिन भाई को ये नहीं बताता कि आखिर कौन से पेड़ लगाओ, आखिर कब लगाओ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका पेड़ लगाते वक्त स्पेशली ख्याल रखो, और कहाँ कौन से प्लांट्स लगाओ। अब भाई भला हमारी ज़मीन ठहरी राजस्थान की ज़मीन, यहाँ पर पेड़ लगाने जाओ तो पौधे को देखकर ज़मीन सूखी हो जाती है, वरना ज़मीन को देखकर पौधा सूखा हो जाता है। यहाँ पेड़ों और ज़मीन का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे किसी कहानी में सास और बहू का। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब मैंने अभी रिसेंटली अपने इस गार्डनिंग के शौक़ को टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया, या मैं यूँ कहूँ उसके साथ जोड़ा, तब मुझे समझ आया कि वास्तव में मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, कौन से पेड़ इस एनवायरमेंट के लिए सूटेबल है लगाने चाहिए, और कब लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, और लगाने के बाद उनकी प्रूनिंग किस तरीके से की जानी चाहिए कि वो उस गर्मा गर्म तवे पर भी आराम से बड़े हो जाएं।
1: और ये टेक्नोलॉजी आपके क्या क्या काम आ सकती है, और आपकी जिंदगी के सवालों को कैसे बेहतरीन तरीके से सुलझा सकती है, इन चीजों के बारे में जानेंगे
0: आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम है माधव।
1: और मेरा नाम है सुमन, और आप सुनेंगे आज हमारा विशेष कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, बदलते जमाने में ट्रैफिक सिग्नल पर जब गाड़ी रुकती है, और उस टाइम हमारा हाथ सीधा हमारे फोन पर जाता है, रेलवे स्टेशन पर अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, या हम किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, तब वक्त कैसे काटा जाए, तो हमारा हाथ सीधा हमारी जेब में रखे फोन पर जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमेशा से फोन हमारे शरीर, हमारी जिंदगी और जेब का हिस्सा नहीं था। यह हुआ है बीते कुछ सालों में।
0: बिल्कुल,
1: आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में टोटल 6 बिलियन, आसान शब्दों में कहूं तो 74% आबादी एक्टिव स्मार्टफोन यूजर है। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान और हमारे लोगों को हर चीज में आगे रहने की आदत भी है।
0: बिल्कुल सुमन, इसके साथ साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब ये फोन बनाया होगा, तब कभी नहीं सोचा होगा कि ये फोन हर किसी की जिंदगी का भी इतना गहरा हिस्सा बन जाएगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम।
0: और उनकी जिंदगी काल, आप ये मानिए दोस्तों कि हम हमारी जिंदगी का लगभग समय फोन के साथ ही बिताने लगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। हाल ही में ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की माने तो वर्ल्ड वाइड जेन जेड जनरेशन, जिसको हम अभी रीसेंट लैंग्वेज में हालिया जनरेशन भी कहते हैं, वो 9

0: घंटे यानी कि दिन का, भाई आप ये मान लीजिए लगभग लगभग 50% हिस्सा फोन के साथ बिता रही, यानी कि उनका स्क्रीन टाइम है। और अगर मैं इस वर्ल्ड वाइड यानी कि ITU के डेटा को और ज़्यादा एक्सप्रेड करूँ तो दोस्तों ऑनलाइन एवरेज हर व्यक्ति इस पूरी दुनिया को मिला के हर व्यक्ति 6 घंटे 40 मिनट अपना समय फोन पर बिताता है।
1: और दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो हर भारतीय अपने दिन के 4 घंटे मोबाइल फोन पर बिताता है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन यूजर विद इंटरनेट हब है। इसके दोस्तों मुख्य रूप से 2 कारण हैं, पहला जनसंख्या का अधिक होना और दूसरा कारण है सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे यहीं उपलब्ध है। इंटरनेट हमारे काम को, हमारी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक सुधार सकता है, यह बात हम भी जानते हैं और हमारी सरकार भी। इसीलिए पूरी दुनिया में सस्ता इंटरनेट प्रति KB केवल हिंदुस्तान में ही उपलब्ध है।
0: बिल्कुल, अब दोस्तों हम ये तो जान चुके हैं कि ये फोन हम सबके हाथ में है, लेकिन अब मेन चीज ये है कि क्या हम इस इंटरनेट और इस मोबाइल का उपयोग वहां कर रहे हैं जहां किया जाना चाहिए, या फिर हम केवल रील स्क्रॉल करने में, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स देखने, या किसी की ग्लैमरस लाइफ को खुद की लाइफ से कंपेयर करने, या किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने, और या फिर वो कंटेंट जो कि आपको एक प्रोडक्ट बना करके बेचा गया है उसको कंज्यूम करने में लगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल आप खुद ही खुद को दे सकते हैं, क्योंकि हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इन सब से इतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे कई बड़े फ्लॉज है जिनको ट्रीट करने में किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर मैं मेजर सेक्टर्स की बात करूं तो हेल्थ केयर और मेडिसिन सेक्टर, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग यानी कि जो पेशेंट है उसको दूसरी जगह से मॉनिटर करना, AI डायग्नोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उसके बॉडी के अंदर जो वेरियस सेंसर्स किस स्तर पर काम कर रहे हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायग्नोज कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी जो कि ह्यूमन सर्जरी स्टोन सर्जरी को काफ़ी फास्ट करने के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी हेल्प हुई है,
1: फाइनेंस एंड बैंकिंग, कैशलेस इकोसिस्टम।
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ मुझे रिसेंटली याद आ रहा है सुमन, कल जो मैंने घड़ी मंगाई थी उसके बारे में, रिटेल एंड ई कॉमर्स, पर्सनलाइज शॉपिंग, ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स, इनको कैसे भूल सकते हैं,
1: एजुकेशन एंड लर्निंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसकी जब हमने शुरुआत में बात की, एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स, प्रिसीजन ड्रोन स्प्रेइंग सिस्टम, सबसे ज़रूरी चीज़ें जिसने किसानों की हेल्प की है वो है स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक्स। दोस्तों इन सभी सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों में, साथ साथ काफ़ी फायदेमंद भी रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसी क्विक टेक्नो टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ के कई डेली टास्क को बहुत ईजी कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है टेक्स्ट शॉर्टकट यानी कि टाइपिंग की झंझट ही खत्म। हमारे कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हमको बहुत लोगों को भेजने होते हैं, तो आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें, मोबाइल कीबोर्ड की सेटिंग में जाएं और वहां जाकर के एक @ लिंक लगा करके अपने उस पर्सनलाइज मैसेज को सेव कर लें। उसके बाद जब भी आप कीपैड पर @ और उसके बाद में वो पर्सनलाइज मैसेज का फर्स्ट वर्ड डालेंगे तो आपका पूरा मैसेज एक प्रॉम्प्ट बनकर के आपके सामने शो हो जाएगा, इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा।
1: वॉइस टाइपिंग और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, दोस्तों जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो या बाइक ऑटो से कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब टाइप करना मुश्किल होता है, कैसे करें उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम नोट टाइपिंग ऐप का वॉइस विजिट यूज़ करें। आप AI ऐप्स के वॉइस फीचर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे दिमाग में कोई क्विक आइडिया आ जाए, जैसे हमारी स्टडीज से रिलेटेड हो या किसी से, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और AI टूल आपकी आवाज़ को बिल्कुल एक्यूरेट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे आपको मैनुअली नोट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
0: और एक चीज़ दोस्तों अक्सर हमारे साथ होती है, हम ये सोचते हैं कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तब मैं ये काम करूँगा, लेकिन इवेंचुअली जब हम वहाँ पहुँचते हैं तब हम काम भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन के अंदर कीप नोट्स या जो भी नोट्स अवेलेबल आपकी फ़ोन की पर्टिकुलर कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है उसमें लोकेशन बेस्ड रिमाइंडर्स डाल सकते हैं, जिससे जैसे ही आप अपने उस लोकेशन के ऊपर पहुँचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन आपको पॉपअप दे करके आपको उस काम के बारे में याद दिला देगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, इस सीज़न के अंदर आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जान सकते हैं कि आपका क्लाइमेट के हिसाब से कौन से पेड़ पौधे अच्छे हैं, इसे कैसे लगाना चाहिए, और राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से मैंने जाना कि वो प्लांट्स जो काफ़ी कम पानी अब्जॉर्ब करते हैं लगाना फ़ायदेमंद रहता है, जैसे बकायन, जाल, खेजड़ी, बोल्टी, एप्पल बेर, गूंदा, नीम और पीपल, ये हमारे क्लाइमेट में सबसे आसानी और अच्छे से लगने वाले पेड़ पौधे हैं।
1: और इनमें से किसी भी पेड़ को घर के दीवार से कम 20 से 25 फुट से ज़्यादा की दूरी पर लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि इसमें टैप रूट सिस्टम होता है और वह भी
0: अग्रेसिव रूट

0: सिस्टम होता है जो कि बहुत स्पीड से बढ़ता है और आपके घर की हाउस फाउंडेशन और पानी की टंकी को नुकसान पहुंचा देता है।
1: इससे बचने का एक और बेहतरीन तरीका है कि आप घर बनवाते वक्त नीम के पास रूट बेरियर्स डलवा दे। इससे बाद में आप किसी भी पेड़ को अपनी दीवार के एकदम पास लगा सकते हैं, क्योंकि नुकसान नहीं होगा। साथ साथ ड्रिप इरिगेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का इस फील्ड में हम सही इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि राजस्थान, जिसको मिट्टी या हम कहते हैं मरुधर कहा जाता है, हम उसको भी हरा भरा कर सकते हैं। और दोस्तों, इस सीज़न में आप अपने दोस्तों के साथ गार्डनिंग का शौक पालें और अपने बचपन के शौक को वापस जिंदा करें। दोस्तों के साथ जाएं और पौधे लगाएं और आप खुद पाएंगे कि कितने मासूम और कितने खूबसूरत पल ये बन सकते हैं।

0: ये जो एज है ना दोस्तों, ऐसी एज है जिसमें मगन होकर के आप कोई भी काम करेंगे तो वो बहुत खूबसूरती और बेहद फ्लोलेस तरीके से होगा। अब जैसे पढ़ाई की बात कर लीजिए, अगर आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे तो आप पाएंगे कि नॉलेज एक्वायर करना इतना टफ टास्क भी नहीं है। और हम आपके लिए हर रोज़ लाते हैं एक क्विज सेगमेंट जिसके अंदर इसी नॉलेज को एक्वायर करने के प्रोसेस को हम मेंटेन रखते हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से दो सवाल जिनके जवाबों को हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में। आज का हमारा पहला आपसे सवाल है,
1: भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित और विकास किए गए डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम का नाम क्या है।
0: और हमारा आज का दूसरा सवाल आपसे है,
1: हाल ही में किस राज्य में भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशील रखी गई।
0: बिल्कुल, अब आप अपने कलम और दूरसंचार यंत्र का उपयोग करके इनके जवाब ढूंढिए। हम बस यूं गए और यूं आए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: रिंगमन दागा प्रेम का ना तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। दोस्तों कहने को तो ये बाबा रहीम का सिर्फ एक दोहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत गहरी और गूढ़ फिलॉसफी का अमृत है जो उन्होंने सिर्फ दो पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। आप सबने नोटिस किया होगा कि हमारी आज की ज़िंदगी में सोशल मीडिया ऐप्स पर हमारे कई सारे फॉलोवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। हम कोई स्टोरी डालते हैं तो हम उनको टैग करते हैं, और अगर वो डालते हैं तो हम टैग भी किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी ज़िंदगी के स्पेशल मोमेंट्स में फिजिकली हमारे साथ कितने लोग मौजूद होते हैं, इससे हमारे रिश्तों की पहचान होती है।
2: बिल्कुल सही कहा माधव। आज के ज़माने में हम देखते हैं बर्थडे स्टोरी लगाना या किसी की एनिवर्सरी स्टोरी लगाना मानो एक डिजिटल रिचुअल सा बन गया है। कई बार तो ऐसा होता है जिसका बर्थडे होता है उससे सारी बातचीत केवल एक स्टोरी के थ्रू ही होती है।
1: बिल्कुल,
2: वह भावनाएं जो प्रत्यक्ष बात करके ज्यादा खूबसूरत हो सकती थी स्टोरी के खेल में कहीं उलझ कर रह जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और यहाँ पर डिजिटल इंटरेक्शन हमारे बीच में एक बहुत बड़ा डिजिटल डिस्टेंस पैदा कर रहा है।
1: ये तो है,
2: जो कि हमारी वास्तविक जिंदगी में देखने को मिलता है। रिश्ते, रिश्तेदारी, लोग एक महत्वपूर्ण एसेट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और किसी ने कहा भी है, व्हेन इट्स बिटवीन पीपल एंड प्रोसेस ऑलवेज चूज पीपल Because the execute the process।
1: एकदम सही कहा तुमने, we execute the process। बिल्कुल।
2: बढ़ते डिजिटल जमाने में माना हम व्यस्त हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे कई कामों को सरल बना देती है। लेकिन साथियों, कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी कभी हमारे रिश्तों के बीच में दूरियां ना बढ़ा पाए, और इन दूरियों को हम केवल एक ही और बेहद सरल तरीके से कम कर सकते हैं, वो है इंटरेक्शन।
1: एग्जैक्टली। तो अगली बार जब भी आपको किसी को बर्थडे विशेष देनी हो, एनिवर्सरी विशेष देनी हो, या कुछ भी आपको ग्रीटिंग्स देनी हो, तो आप फिजिकली उनसे जा करके मिलें, अदरवाइज आप उनसे फोन करके बात करें। क्योंकि देखिए, जब आप इंसान से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है एक बॉन्ड बनता है जो कि मशीन नहीं बना पाती।
2: लेकिन बात जरूर करें, केवल औपचारिकता नहीं।
1: बिल्कुल। और याद रखिए दोस्तों, रिश्ते सबसे ज्यादा अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है। WHO की हालिया रिपोर्ट माने तो जिन लोगों की बाल्यावस्था, या यूं कहूँ कि जो जिनके बचपन के अंदर जो परिवार से जिनका जुड़ाव ज्यादा होता है, परिवार के लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा होता है, लोगों के साथ बातचीत ज्यादा होती है, उनका भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी कई हद तक ज्यादा होती है, उनके अकेलेपन के शिकार होने के चांसेस भी बहुत कम होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जब घर में या बाहर आपके चाहने वालों के साथ हों तो उनके साथ बिताए गए लम्हे सबसे ज्यादा सुंदर हों, ना कि आपकी किसी सोशल मीडिया की फीड। कोशिश करें आपके लम्हे खूबसूरत बने, ना कि आपकी किसी गैलरी में रखी हुई फोटोज की ग्रिड, क्योंकि लम्हे ज्यादा महत्वपूर्ण है। One more time.

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

0: जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: अक्सर हम देखते हैं लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन झिझक, डर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण अपनी बात कह नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने अपनी राय रख दी तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं हमारी बात गलत न समझ ली जाए। दोस्तों, अपनी बात रखना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों की बात सुनना।
3: ये बात बिल्कुल सही कही सुमन तुमने। और दोस्तों, दरअसल अच्छी कम्युनिकेशन केवल बोलने का नाम नहीं है ध्यान से देखा जाए तो, बल्कि सही समय, उपयुक्त शब्द और सही व्यवहार के साथ अपनी बात व्यक्त करने की वो कला है जो आपको एक बहुत ही कुशल वक्ता बनाती है।
2: दोस्तों, मान लीजिए आपको कहीं अपना सुझाव रखना है, अपने जो थॉट्स, आइडियाज, विचार रखने हैं, आप चुप रहे, कुछ नहीं बोले। आपको लगा शायद किसी को पता चले कि मैंने अच्छा नहीं बोला, मेरे विचार है वो बेहतर नहीं है, पर वो थॉट किसी और ने रख दिए और उस टाइम आपको लगा कि काश ये मैं बोल देता, फिर उस टाइम कितना रिग्रेट होगा हमें।
3: बिल्कुल, दरअसल अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे विचार व्यक्त करने के बाद में यदि कोई व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं भी होता है तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। अच्छे संवाद की यही तो पहचान है कि हम असहमति होने पर भी एक दूसरे की इज्जत करते रहें और सबसे बड़ी बात उस जो संवाद का मूवमेंट है उसकी इज्जत करते रहें।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। अपनी बात रखने का मतलब बहस करना या किसी पर अपनी राय थोपना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपने विचार को स्पष्ट, शांत और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करें।
3: बिल्कुल, और इसके अंदर एक सबसे ज़रूरी है, अहम बात ये भी है दोस्तों कि टू बी ए गुड स्पीकर फर्स्ट यू नीड टू बी ए गुड लिसनर। अगर आप बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले हमें सुनने की कला को सीखना होगा, और ये कला सबसे अच्छी अगर आज की डेट में हम बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सीख सकते हैं। वो जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो आप उन्हें देखें, वो सिर्फ उन्हें सुनते हैं, कई देर तक शांत बैठ कर सामने वाले की बात को सुनते रहते हैं, और यही उन्हें एक कुशल वक्ता बनाती है।
2: दोस्तों, यदि आप अपने विचारों को व्यवस्थित करके बोलेंगे तो सामने वाले पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे भी।
3: बिल्कुल, और हर इंसान की बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो कि काम के होते हैं, चाहे आप कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, हाउसवाइफ हो या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, आपकी बात में हो सकता है कुछ बातें सही हो, कुछ बातें गलत हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की जो चीज़ है उसको व्यक्त करने और उसको अस्तित्व में लाने के लिए आपका बोलना ज़रूरी है।
2: इसीलिए अपनी बात रखने के लिए कभी डरे ना, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें और अपनी आवाज़ में आत्मविश्वास रखें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें।
3: बिल्कुल, और जब बात विनम्रता की आती है दोस्तों तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिन जो मतलब अजेय पराक्रम होने के साथ साथ भी जिनके अंदर विनम्रता का अटूट या मैं कहूँ कि बहुत शानदार एक अनुपात उनके अंदर है, और वो है हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस, हमारे देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे देश के सशस्त्र सेना बल। आइए जानते हैं कैलाश खेर की आवाज़ में उनके ऊपर कही गए कुछ संवाद।
4: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारम्बार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के

0: हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: रेगिस्तान की तपती धरती पर बहती एक ऐसी नदी जो अपने अनोखे स्वभाव के कारण पूरे भारत में अलग ही पहचान रखती है।
1: लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में स्थित नाग पहाड़ से होता है। शुरुआत में इसका पानी मीठा होता है लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये खारा होता जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। दरअसल जिन इलाकों से ये होकर के गुजरती है वहाँ की मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इसका पानी आगे पहुँचते पहुँचते खारा होता जाता है।
0: लूनी नदी लगभग 495 किलोमीटर लंबी है।

0: ये राजस्थान के अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जैसे जिलों से होकर गुजरती है और अंत में गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है।
1: और सबसे रोचक बात ये दोस्तों, आपने सुना होगा सारी नदियां बारिश के पानी से बनती है और अंत में जाकर के समुद्र में मिलती है, लेकिन लूनी नदी पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसको इनलैंड रिवर भी कहते हैं, क्योंकि ये कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है, समुद्र तक पहुँचती ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हालांकि इस नदी का पानी हर जगह पीने योग्य नहीं होता, फिर भी ये आसपास के क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बरसात के मौसम में ये किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती।
1: वैसे तो लूनी नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी है दोस्तों, जिसके अंदर जवाई, सुकड़ी और गुया, ये नदियाँ वर्षों के समय लूनी नदी में जल की मात्रा बढ़ाती है, यानी कि ये बारहमासी नदियाँ नहीं है, केवल जब बरसात होती है, बारिश आती है, तभी इनमें पानी आता है।
0: बिल्कुल, लेकिन दोस्तों आज के समय में लूनी नदी भी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चैलेंजेस का सामना कर रही है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम समय रहते जल संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में स्थिति और भी ज़्यादा कठिन हो सकती है।
1: ये तो बात है ही, इसके साथ साथ दोस्तों हमें नदियों को स्वच्छ रखने की भी आवश्यकता है। पानी का सही उपयोग करने, वर्षा जल का संचयन को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है पानी की हालिया हालत को देखते हुए। छोटे छोटे प्रयास भी इसके अंदर हमारा बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं।

0: समय में वही हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाती है।
1: बिल्कुल, और इसमें ना एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन्स ऐसी होती है जो कि आपको होनी ही चाहिए। कुछ मिनटों में कई बार ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पर लिया गया फैसला किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है, और उस फैसले में एक छोटी सी जानकारी बहुत बड़ी भूमिका निभा जाती है।
0: सही कहा तुमने, आज हम उसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जिसकी जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की। अक्सर लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर तो याद रखते हैं, लेकिन अपना ब्लड ग्रुप नहीं जानते। जबकि किसी भी इमरजेंसी में यही छोटी सी जानकारी हमारी जान बचा सकती है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों जो दुर्घटना होती है कभी भी किसी को बता करके नहीं होती है। दुर्घटना के समय, ऑपरेशन या किसी भी गंभीर बीमारी के दौरान यदि तुरंत रक्त की आवश्यकता हो, ब्लड की नीड हो, तो सबसे पहले मरीज का ब्लड ग्रुप देखा जाता है। इसीलिए आपको अपना ब्लड ग्रुप ज़रूर पता होना चाहिए।
0: ये केवल जानकारी नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल दोस्तों, रक्त समूह की अगर बात करें तो मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, और इन सबके पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ बी नेगेटिव। हर व्यक्ति का रक्त समूह बाय बर्थ ही डिसाइडेड होता है और लाइफ टाइम वही रहता है, कभी नहीं चेंज होता।
0: लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति ने रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।
1: नहीं, चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं, वो किए जाते हैं। हर जो हर किसी का ब्लड हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। रक्त चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है, क्रॉस मैचिंग करना आवश्यक होता है, या अगर गलत रक्त चढ़ा दिया जाता है तो कंडीशन काफ़ी, सिचुएशन काफ़ी टिपिकल हो जाती है, लाइफ भी खतरे में आ जाती है।
0: इसीलिए हॉस्पिटल में यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा सावधानी से करते हैं। कई लोग ब्लड डोनेशन करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी या उनके जो खुद की हेल्थ है उस पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा।
1: नहीं नहीं सुमन, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्दी है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार रक्तदान करता है, ब्लड डोनेशन करता है, तो इससे कोई भी उसको परमानेंट नुकसान नहीं होता। हमारा शरीर कुछ ही समय में उस रक्त की कमी को भी पूरा कर लेता है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए नया जीवन बन सकता है। इसको देने के लिए बिल्कुल झिझक नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, रक्तदान सबसे बड़ा मानव सेवा का काम है। इसके साथ ही हमें अपना ब्लड ग्रुप किसी भी कार्ड में या मेडिकल रिकॉर्ड में, हमारे मोबाइल में रखना चाहिए, जिससे हमें ज़रूरत के वक्त पता चले उसका।
1: बिल्कुल, और साथियों, परिवार के सभी सदस्यों को भी अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाते रहिए। रक्तदान के प्रति जागरूक रहना भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, और आपकी एक छोटी सी पहल किसी भी अनजान व्यक्ति की नई जीवन की उसकी उम्मीद उसको दे सकता है। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी, स्पेशली यूथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार नॉलेज को एक्वायर करते रहें, और आकाशवाणी हमेशा से नॉलेज एक्वायर करने की श्रृंखला में आपका साथी रहा है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कार्यक्रम की स्टार्टिंग में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, जिसे हम किस सेगमेंट का नाम देते हैं, जिनमें हमारा पहला सवाल आपसे था,
0: भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित और विकास किए गए डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम का नाम क्या, और इसका नाम है डिजिपिन। और हमारा दूसरा प्रश्न था आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है, और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़।
1: साथियों, अगर आपका जवाब सही है तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर आपके जवाब सही नहीं है तो सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि ता उम्र चलती रहती है। सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता। यदि आप 35 के हैं, 45 के हैं, 55 के हैं, ता उम्र सीखने की प्रक्रिया जारी ही रहती है। इसीलिए कहते हैं कि एक शिक्षक जो होता है, गुरु जो होता है, वो सबसे पहले विद्यार्थी होता है, और वो ता उम्र विद्यार्थी ही रहता है, क्योंकि सुमन वो ता उम्र किसी को शिक्षण देने का कार्य करता है। और किसी को शिक्षण देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर वक्त, हर टाइम, उस टाइम के हिसाब से
0: अपडेट रहे,
1: नॉलेज को एक्वायर करता रहे। इसलिए आप अपने अंदर जो विद्यार्थी है उसको निरंतर जीवित रखें, उसको निरंतर जीवित अवस्था में बनाए रखें। साथ ही हम आपके लिए एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के लेकर गए हैं, जिसकी विज्ञप्ति जारी की गई है RSSB के द्वारा,
0: और एग्ज़ाम का नेम है CET, जिसकी डेट, जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं 24 जून से 23 जुलाई तक। इसका आवेदन आप ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू कर सकते हैं, और एलिजिबिलिटी है 12th पास। जिस भी विद्यार्थी ने 12वीं पास कर रखी है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है।
1: साथियों इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और ये है कि ये जो एग्जाम है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राजस्थान सरकार के द्वारा 14

विभिन्न भर्तियों के आवेदनों को स्वीकार करने के लिए बेस एग्जाम के रूप में लिया जाता है। यानी कि इस एग्जाम के बाद आपको किसी भी परमानेंट रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती है, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है। इसको क्लियर करने के बाद आप राजस्थान की 14 भर्तियां जो कि नोटिफिकेशन के अंदर उल्लेखित है उनको भरने के लिए पात्र हो जाते हैं। हाल ही में जो भी वैकेंसीज आई उसके अंदर 12th CET और 12th ग्रेजुएशन लेवल की पात्रता को विशेष रूप से परमानेंट निर्धारित कर दिया गया था, तो आने वाली वैकेंसीज के अंदर भी ये निर्धारित रहने वाली है। हालांकि CET दो फेजेज में होता है, CET 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। ये 12th लेवल की वैकेंसी जिसमें मुख्य रूप से 14 भर्तियों को उल्लेखित किया गया है, जिसके अंदर 14 भर्तियों के लिए जो आवेदन होंगे वो 12th CET के थ्रू ही आ सकते हैं। अगर आप उन भर्तियों के लिए इंटरेस्टेड हैं और आगामी राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं उनमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप जरूर से इस जो ये एग्जाम है इसको जरूर भरें। इस एग्जाम के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुख्य रूप से राजस्थान GK से आपको सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े से रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, राजस्थान की जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, आर्ट एंड कल्चर, उससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। और आप सब जानते हैं राजस्थान का कल्चर इतना रिच कल्चर है जिसको आप अनदेखा कर ही नहीं सकते। जब आप इसको पढ़ने लगेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि धरती धोरारी क्यों कही जाए और धरती वास्तव में इन्हें मरुधरा क्यों कहे। तो आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा, सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, अगर आप राजस्थान का जनरल नॉलेज यूं ही एक्वायर करना चाहते हैं तो भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि राजस्थान का जो नॉलेज है, राजस्थान का जो इतिहास है, वो केवल इतिहास नहीं है, वो शिला लेख हैं जो कि हमारे पूर्वज कायम करके गए हैं। सुनते रहिए हमारे साथ, हम बस यूं गए और यूं आए।

0: दोस्तों, जिंदगी सीखने का नाम है और हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखा जाती है।
1: और उम्मीद है आज भी हमने बहुत कुछ नया सीखा होगा। जब भी आपसे बातें करते हैं, जब भी आपसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है, मन ही नहीं करता कि शो को ख़त्म करके आगे जाएं। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, हमारे लिए भी नहीं ठहरेगा। हमें आपसे अलविदा लेनी होगी। दोस्तों, अपना ख्याल रखते रहें और सबसे ज़रूरी बात, अपने माता पिता, बुज़ुर्गों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, जंतुओं का ख्याल रखते रहें। गर्मी बहुत है, उनके लिए पानी के पड़ोसी भर के ज़रूर रखें। और अभी मौसम अच्छा है, मानसून आने वाला है, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही नए क्रिएटिव और अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए
0: नमस्कार।

0: उम्मीद है आज भी हमने बहुत कुछ नया सीखा होगा। जब भी आपसे बातें करते हैं, जब भी आपसे इंटरेक्शन का मौका मिलता है, मन ही नहीं करता है कि शो को ख़त्म करके आगे जाएं। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, हमारे लिए भी नहीं ठहरेगा, हमें आपसे अलविदा लेनी होगी। दोस्तों अपना ख्याल रखते रहें और सबसे ज़रूरी बात, अपने माता पिता, बुज़ुर्गों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, जंतुओं का ख्याल रखते रहें। गर्मी बहुत है, उनके लिए पानी के पारसी भर के ज़रूर रखें। और अभी मौसम अच्छा है, मानसून आने वाला है, पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही नए क्रिएटिव और अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5:55 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इस कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर चर्चा, लोकगीत और लोक भजनों के अलावा आप सुनेंगे डॉक्टर भंवर देवी सिंह नाथावत से ली गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा ग्वार और मूंगफली की फसल में लगने वाले मुख्य रोग और उनका प्रबंधन। इनसे बातचीत करेंगे श्री संदीप कुमार पारीक। हमारे श्रोता सुगम संगीत सुन पाएंगे संध्या 7:45 पर।

हमारे श्रोता लोक संगीत सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण रात्रि 10 बजे किया जाएगा।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को ही अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: Major General Gurpreet Singh, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जी

0: जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है निकाह।

ये गीत आपने सुना स्वर महेंद्र कपूर और सलमा आगा का था, फिल्म का नाम था निकाह। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यशुदास और हेमलता की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम है चितचोर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

Akashwadi at 90. फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में अगला गीत। फिल्म का नाम है गोरा और काला।

धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोलिए और धीरे धीरे सुनिए पड़ोसियों को, किसी को भी। हमारे मनोरंजन से संकट नहीं आना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी मुकेश और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम था गोरा और काला। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है और आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर की। ये गड़बड़ हो गया, इसको रोक लो आप। फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में, आइए आप सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है सीमा।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध आपने ये गीत सुना। गीत लिखा था शैलेंद्र ने, गीत को स्वर दिया था मन्ना डे ने और फिल्म का नाम था सीमा। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब पहुंचता है अपने अंतिम सोपान पर और आइए सुनते हैं अंत में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है फिर कब मिलोगी, गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOA हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA किया गया। आज नई दिल्ली में ये MOA राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे। MOA पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपए की लागत से हथिनी कुंड बैराज से चूरू तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी।
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथिनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दिन को भावनात्मक बताते हुए कहा कि ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की बरसों पुरानी आशाओं, विश्वास और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के विकास, जल सुरक्षा और समृद्ध भविष्य का नया अध्याय लिखेगा। इससे जल्दी ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इस समझौते पर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी।
3: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: शेखावाटी क्षेत्र की बरसों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा

0: में आज हुए एमओए से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़ी राहत देने वाला बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीर जवानों और सशस्त्र बल कर्मियों को असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई जाबाजों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई इन सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट भी शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो, शहर में हो, सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रोक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉकवे भी उनके लिए बनाया।
0: श्री बिरला ने सियाम सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने और नवाचार करने का आह्वान किया। राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन ने संसद भवन में इन्हें शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है। राजस्थान से डॉ अलका सिंह ने भी आज शपथ ली। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं कक्षा में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज दोपहर में ताला मोड़ के पास एक होटल में बन रहे STP प्लांट की दीवार गिरने से हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मौका मुआयना किया। मीडिया से बातचीत में श्री पटेल ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जाँच करवाकर

0: दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है। और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरत जाएगी। और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के आमेर क्षेत्र में दीवार गिरने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि मानसून के पहुंचने में हो रही देरी से अधिकतर हिस्सों में उमस का असर बना हुआ है। कुछ हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां पश्चिमी भागों के मुकाबले अधिक सक्रिय रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। सरकार ने बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंध मजबूत किए हैं। देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOA हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले में इन दिनों जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को रोटावेटर अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और समय की बचत करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान भी शुरू हो गया है। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक की बच्चों की आयु के 187,000 से

0: अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो बूथों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष टीमों की तैनाती की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जागरूकता संगोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आशा सहयोगिनी और ANM कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों का सर्वे कर रही है। परिवारों को ORS और जिंक की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही माताओं को डायरिया से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान बच्चों को डायरिया से सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर रैलियां और योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक काम किए गए। विभिन्न स्थानों पर फार्म पौंड, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और भूजल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में उल्लेखनीय काम हुए। विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में भूजल खारा है वहां फार्म पौंड के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। इससे खेती और बागवानी कामों को लाभ मिल रहा है। किसान सोलर पंप और ड्रिप सिंचाई पद्धति का भी उपयोग कर रहे हैं जिससे पानी की बचत हो रही है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डीग शहर में मालीपुरा रोड पर फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। इससे जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। डीग पुलिस द्वारा विशेष ग्राम गोद योजना के तहत गाँव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले लोगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए डीग शहर में इको कूलिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आमजन को विश्राम, शीतल पेयजल और ORS की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों में प्राकृतिक वेंटिलेशन और सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जाएगा। बीते दिनों जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिला। हाल ही में बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर तेज हवाएं और वर्षा भी दर्ज की गई। बारिश से किसानों में उत्साह का माहौल है। उनका मानना है कि इससे खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन को लाभ मिलेगा। इसी के साथ डीग जिले की चिट्ठी यहीं समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली में आए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौताओं 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आए वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथोनी मानसून रे प्रदेश में आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगण रा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। अरबे समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना ने बनावण और लागूकरण ने लेर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA करीजियो। आज नई दिल्ली में ओ MOA राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बीच वियो। मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति

0: मंत्री सी आर पाटिल मौजूद रिया। एमओए माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दस्तखत करया। ई मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहो के करार रे तहत मानसून रे दौरान राजस्थान रा हकरो पानी भूमिगत पाइपलाइन री मार्फत हथिनी कुंड बेराज सप्लाई करो जायला। परियोजना री बनाई चुनाई सारू कोई 3,900 करोड़ रुपया री लागत हथिनी कुंड बेराज चूरू ताई पाइपलाइन बिछाई जायला। एणु पीवण रा पानी रे साथ ही पाणत सारू पानी री सुविधा मिलेला।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ई दिन ने भावनात्मक बतावता कहो कि ओ फगत एक करार नहीं है बल्कि लाखों परिवारों री साला पुरानी आस विश्वास और संघर्ष री जीत है। वणा कहो कि ओ ऐतिहासिक कदम राजस्थान रा विकास पानी री हिफाजत और समृद्ध भविष्य रो नुओ पाठ लिखेला। एणु बेगाई जमी माथे काम शुरू वह जायला। ई करार माथे और जानकारी दे रिया है मारा खबरनवीस जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: शेखावाटी हलकारी बरसा पुरानी पीवण रा पानी री समस्या रा निपटारा कानी आज व्यो एमओए रे पछे सीकर चूरू और झुंझुनू जिला में खुशी रो माहौल है। लोगा इन महत्वाकांक्षी परियोजना ने मोटी राहत देवन वाली बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण जलसा रा दूजा चरण में वीर जवाना और सशस्त्र बल कर्मियों ने असाधारण वीरता साहस और 28 सेवाओं सारू इनाम दिया। राष्ट्रपति भवन में व्या ई जलसा में मातृभूमि री हिफाजत में ठावो बलिदान देवन वाला कई वीरा ने मरण रे पछे सम्मानित करी जिया। ई मौके उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलां रा ठावा एहलकारी मौजूद रिया। वो सम्मान देश री आतंकवाद उग्रवाद और सरहदी हल्का में चुनौतियां रे खिलाफ बरोबर लड़ाई ने दर्शावे है। साथ ही विमानन समुद्री अभियाना और मानवीय मिशना में दिखाई जी असाधारण बहादुरी ने मान्यता दी जावे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में न्यारा न्यारा खेल सुविधाओं रो लोकार्पण करियो। कोई 4.5 करोड़ रुपया की लागतों विकसित करी जी आ सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्टी बेड़ा है। ई मौके श्री बिरला कहो कि कोटा बूंदी हल्का रा खिलाड़ियां सारू वैश्विक थरी सुविधा देवन री कोशिश करी जावे।
3: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो शहर में हो सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो, इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रोक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है।
0: श्री बिरला श्याम सभागार माए प्राकृतिक खेती माते वीर राज्य थर्री कार्यशाला माए भाषण करियो। वणा काश्तकारों प्राकृतिक और जैविक खेती ने अपनावण और नवाचार करने की अरज करी। राज्यसभा रा 8 नुआ चुनी जा सदस्य आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा रा सभापति सीपी राधाकृष्णन संसद भवन में आने शपथ दिराई। आ सदस्य में कर्नाटकों कांग्रेस पार्टी रा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेड़ा है। राजस्थानों डॉक्टर अलका सिंह आज शपथ ली। ई मौके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन

रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आज त्रिभाषा नीति माथे दिशा निर्देश काढ़िया। बोर्ड कहो के कक्षा दसवीरा अबारा बेस ने नवी भाषा नीति री पालना नहीं करनी वेला। बोर्ड ओई कहो के सातवीं आठवीं और नवी कक्षा माए पढ़ रिया पढ़ेसरा ने ही दसवीं कक्षा माए पुगण माथे तीजी भाषा माए बोर्ड परीक्षा देवन री जरूरत नहीं वेला। बोर्ड कहो के वाने एक बत्ती भारतीय मातृभाषा माए पढ़ाई करता आपरी विदेशी भाषा ने चालती राखण री मंजूरी वेला। तीसवा राज्य थर्रो भामाशाह सम्मान जलसो आज जयपुर माए राखीजियो। बिड़ला सभागार में आविया ई जलसा माए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा जगत रा 276 दानदातावां ए प्रेरकां रो सम्मान करियो। जलसा माए बोलता श्री बिड़ला दानदातावां री सराहना करता कहो के ओ समाज रे प्रति

0: 30वां राज्य थर्रो भामाशाह सम्मान जलसो आज जयपुर में राखीजियो। बिड़ला सभागार में आविया ई जलसा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा जगतरा 276 दानदातावा ए प्रेरका रो सम्मान करियो। जलसा में बोलता श्री बिड़ला दानदातावा री सराहना करता कहो के ओ समाज रे प्रति उत्तरदायित्व और सेवा रो प्रतीक है, इणु हजारों पड़ेसरा रा सपना पूरा करण में मदद मिले है। केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य प्रणाली ने घनी मजबूत करी है, इस सारू करड़ी कोशिश करी जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहो के सरकार पहला दूजा और तीजा थरी स्वास्थ्य सेवाओं रो पसारो करियो है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रा सम्मेलन में बोल रहा हा। वना कहो के रहवासियां और स्वास्थ्य प्रणाली रे बीचे मेलू पहला बिंदुरा रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मिंदर तर्पित करी जा है। सरकार चोखा इलासारू प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं रे बीचे तालमेल मजबूत करियो है। देश भर में 23 नुआ एम्स और खास तौरू कम सुविधा वाला और पिछड़ा जिला में 157 मेडिकल कॉलेजा की स्थापना रे साथ ही तीजा थर्री स्वास्थ्य सेवाओं ने मजबूत करिया है। जयपुर रा आमेर हल्का में एक दीवार ढह जावणु 3 मजूरा री मौत वेगी ए 3 लोग घायल हुआ। घायला ने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराई जा है। हादसों आज दोपहरा ताला मोड़ कने एक होटल में हुआ। एसटीपी प्लांट री दीवार पड़ जावणु हुयो। सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन कानियो राहत और बचाव रा काम शुरू करी जा। जिला प्रभारी मंत्री जोकाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक मौका रो मुआयनो करियो। मीडिया साथे बदलमाए श्री पटेल हादसा ने दुखदायी बतावता कहो के इनरी विगतवार जांच करार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जायला।
1: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है। और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरत जाएगी। और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा आमेर हल्का में दीवार ढह जावणु हुआ हादसा रे माथे गहरो शोक जतायो है। और अब मौसम, राज्य में दिखनाद आथुणी मानसून आवण सारू परिस्थितियां बरोबर है। फिर वही मानसून रे आवण में भी देरियों घणकरा हल्का में उमस रो असर बनोड़ो है। कुछ ऐसा में मानसून पेलेरी गतिविधियां बनोड़ी है। मौसम महकमा मुजब अगुणी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां दिखनाद हल्का रे मुकाबले 32 सक्रिय वह सके है। आवता कुछ दिन में न्यारा न्यारा हल्का में गरज चमक और तेज बायरा रे साथ हल्कियों मझला दर्जारी बरसात रो दौर चाल सके है। दिखनाद अगुणी और अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का में 2 जुलाई बिरखरी गतिविधियां में बढ़ोतरी होवर और 2-5 जुलाई रे बीचे अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए बिरखरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी री आस है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो कि ई दौरान कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बिरखा वह सके है।
2: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: देश भर में आज संत कबीरदास की जयंती मनाई जावे। वे भक्ति कालरा महान संत और कवि हा। वना जीवन भर सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई। वारा दुआ आज सही जीवन जीवन रो मार्ग दिखावे है। कबीर जयंती के मौके आज पाली माए शोभा यात्रा निकाली जी। नया अब आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली माए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौता 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली माए वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी। और दिखनाद आथुणी मानसून रे प्रदेश में

वातावरण सारू परिस्थितियां अनुकूल जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगण रा आसार इन रे साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। संध्या के 7 बज चुके हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम सुनने वाला सगला भाया और बहना ने आप रहे तले भरत कुमार जाजड़ार
1: संदीप पारिकरा घणा घणा राम राम
0: भाई लोगा घणे हरख और कोड़सू आज रो कार्यक्रम शुरुआत करूं और शुरुआत में मैंने एक ही बात कहना चाहूं कि आज की गर्मी है अणुती पड़ रही है और ये गर्मी स्थिति मैंने जब देखा तो अड़ी एक ही रहे कि सावन जल्दी जल्दी आ जाए पर कहीं करा अब के जेठ रा महीना दो आ गया है और दो जेठ आने से गर्मी रो समय जो है बढ़ गयो है और सावन जो है थोड़ो सी अड़गो हो गयो है पर भी बावजूद भी अपार जकी खेती री तैयारी भी पर असर नहीं पड़नो चीज़ है जो आने वालों सावन है भी आप ने पूरी तैयारी करनी है।
1: बिल्कुल भरत भाई देखो आप जकी बात कह रहे हो बिल्कुल सही है और जट ताई बिरखा की बात है तो देखो लूम झूम मदमाती आवेगी बिरखा बीनणी और जकी उड़ीक है बाबी अपनी पूरी होएगी लेकिन आपा ने थोड़ी सी सावचेती रखनी है और बात ई ध्यान ई चीज को रखनो है कि खेती बाड़ी से संबंधित जितनी भी आपनी तैयारी है वे आपनी सांगो पांग होनी चाहिए। पहली बात तो जको भी बीज आपा बोवा वो अच्छी उन्नत किस्म को है और सिंह सागे सागे एक चीज को और ध्यान रखना है भरत भाई कि जको भी बीज आपा लेवा बिंगो पक्को बिल लेवा
0: हाँ।
1: क्योंकि सगड़ो दारोमदार जो को है वो बीज पर ही निर्भर करे।
0: बिल्कुल सही कहे और इसके अलावा देखो वो भी ध्यान रखना है कि बीज जो को है ना सिर्फ बिल लेना है बल्कि विश्वसनीय जगह से लेना है और बीज जकी किस्म है बिरे भी अपन ओ ध्यान रखना है कि अपर क्षेत्र जकी अनुकूल किस्म है बिना ही प्रयोग लेना है और खेत रोई मिट्टी री जांच जरूर करानी है।
1: बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर अच्छी किस्म आप लेवांगा तो एक तो अंकुरण बढ़िया होगा और रोग बीमारी जकी है बेबी भी में कोनी लागेगी। अब इन सागे सागे जिकी भी फसल आप ले रहे हैं जो मान लो आप मूंग बारे हाँ मोट है बाजरी है या मूंगफली या कपास जिकी भी आप फसल लेनी चाहवा बिंग संबंध में पूरी जानकारी जिकी है बापा ने पहले से कर लेनी चाहिए। जानकारी की बात देखो किस्म तो आप ले लेंगा लेकिन बिंग पक्ष जब फसल लाग जावे तैयार होने लागे तो बीच में कई इन प्रकार की स्थितियाँ आवे कि कभी कोई कीड़ा मकोड़ो लागो कभी सफ़ेद माखी लागी कभी पेड़ को तणु लाग तने की लट चिके वह लागी तो आंसू आपने फसल ने किया बचा रखनो है इन जिकी तकनीकी जानकारी है नी भरत भाई बा आपने जका भी कृषि विशेषज्ञ है बासु बातचीत करके पूरी एक सारणी के रूप में चीजें आपने सामने होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रकार और नुकसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी में नहीं हो।
0: अच्छा वो भी ध्यान रखना है कि निराई गुड़ाई या खरपतवार जो को अपन निवारण है वो भगत सरू करता रहो थोड़ी सी बिरखा आवे नहीं आप बुआई तो करी को नहीं बीसू पहली जगह है खरपतवार क्षेत्र में ना उगनी चालू हुई तो झट तक हो सके इसु मुक्ति तो आसान है पर बीज री बुआई रे बाद रे मैंने जकी खरपतवार उगे नहीं बात तो निराई गुड़ाई से ही अपने भी मुक्ति मिल सके।
1: बिल्कुल मुक्ति मिल सके और देखो एक चीज और भी ध्यान रखना है कि बिरखा की आप उड़ीक तो रखा पर अब आगे जब चौमासा आवे नहीं तो खेती बाड़ी के सागे सागे आप रखा धीणो थापो तो ई वगत आपने ई चीज को भी ध्यान रखना है कि जक्का भी आपना पशु है दुधारू पशु है या खेती बाड़ी के काम में ले रहा है वह पशुओं को टीकाकरण जो को है वो आप जरूर कराओ।
0: बिल्कुल सही बात है और टीकाकरण के वास्ते वो जरूरी है कि आप नज़दीक जो को भी पशु चिकित्सालय है बटे लेर जावा और बिरबाद मैंने जकी सलाह दी जाए जिता टीका कही जाए जिते भगत पर कही जाए वह पूरा लगवाना है भी में कोई आलस करने को नहीं है। और एक बात वो भी ध्यान रखना है कि खेतरे मायने भी अगर आप कोई रासायनिक खाद अगर

0: कोई भी सलाह पर काम में ले रही है तो मेरी मात्रा कितनी काम में लेनी बात जरूर पूछ लो। देखो पहली बात तो है प्रयास करने का, रासायनिक खाद कोई काम में लेनी को नहीं है, और जगह कीट पतंगा जगह यहाँ मुक्ति वास्ते अगर कोई रासायनिक पदार्थ काम में ले रही है तो कोशिश करो बचने रही, लेकिन अगर काम में लो तो मात्रा बीती लो। कई बार लिखा होगा कि 0.001% घोल तैयार करो, अब ध्यान ही को नहीं कि वो कितो घोल गए, तो बदोई जितने तक डालो जितने तक जो ढोलगी रंग धोड़ो नहीं पड़ जाए।
1: बिल्कुल, और देखो भरत भाई थारे बातों को जो कोथड़ी है नहीं, इन बातों तो घनी है, पर इन कोई गीत संगीत को भी है कि
0: नहीं? मारी बात अधूरी रहेगी। मैं क्यों आज की है नहीं कि ढोलगी में जितने तक धोड़ो रंग नहीं आ जाए जितने तक, आज सगड़ों गलत बात है, यूं बचना है। मात्रा बीती ही काम में लेनी है जीती की जरूरत हुआ है। और अब जब इतने बात करी हमारे कोथड़े रहे, कोथड़े तो घणो ही मोटो है, कोथड़े में गीतरिया गीतरिया भरिया पड़िया है, पर ये गर्मी ने मैंने तो देखो केवड़ो सगड़ा ने चोखो लगे, तो गीतड़ लो भी एडो ही ऐसा सुनो।

0: है एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।
4: संदीप भाई, देखो बात चलती है थोड़ी देर पहले निराई गुड़ाई रही, तो निराई गुड़ाई करने वास्ते एक भगत होया करतो हो के जद खाली खुरपी ले लेता, कुदाली ले लेता, निराई गुड़ाई करिया करता। आजकल तो बिर वास्ते भी कई यंत्र आ गया है और जरूरी है कि ये यंत्रारी भी थोड़ी सार संभाल भी रखी जावे और इन्हें बढ़िया तरीके से काम में भी लिया जावे।
5: बिल्कुल सच्ची बात है। देखो निर्णान करनो जो है नी वो घनो जरूरी है।
4: हाँ,
5: क्योंकि जबकि भी मेहनत आपा खेती बाड़ी में करा, चाहे आपा कोई खाद दे रहा हाँ या पानी भी काम में ले रहा है नी, तो बिंगो जो को मुकाबलो है नी वो है आपने खरपतवार से। अब आपने जो अच्छी खाद दे दी, खाद तो दी आपने फसल के लिए, लेकिन बिंग सागर मुकाबलो करे जितना भी जिका अवांछित जिका पेड़ पौधा है जिका खरपतवार है, तो बंग कारण किसान की खेती की लागत भी बढ़ जावे और उत्पादन भी जो को है वहीं पर भी फर्क पड़ा करे। इन वास्ते निर्णान करनो तो घनो जरूरी है।
4: बिल्कुल। और इर अलावा बात अगर करा निराई गुड़ाई रा आधुनिक यंत्र रही तो कई तरह रा यंत्र आ गया। अपन अगर छोटा छोटा यंत्र रही बात करा तो पावर वीडर, कोनो वीडर, रोटरी वीडर, मल्टी क्रॉप वीडर, ऐसा कई मशीन आ गया। ई मशीन सु घंटा रो काम जो है मिनटर में न होने लग गया है और बीघा री खेती जो की है एकदम आसान हो गई है।
5: बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन देखो भरत भाई जिकी भी चीज़ें हैं असंभव जद है जद आप सघन खेती करा।
4: हाँ।
5: और सघन खेती के लिए जरूरी है कि आपने कने सिंचाई का पूरा साधन हो। तो जी मान लो कोई सीमांत किसान है, लघु किसान है, तो वो तो देखो आपने जगह देसी प्रचलित जगह कृषि यंत्र है बांसु काम चलावे, लेकिन जरूरत इन चीज की है कि वो इन चीज के महत्व ने समझे कि निर्णान करनो कितो जरूरी है।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: बड़ो क्षेत्र है तो आपने बड़ी बड़ी मशीन भी चाहिए, लेकिन छोटो क्षेत्र है तो भी निर्णान करने को जो को महत्व है वो कम को नहीं हो।
4: बिल्कुल सही बात है। और मेरे लिए वो भी ध्यान रखना है कि थोड़ा देखो निर्णान करने में मैंने आपने मेहनत तो करनी है और एक एक जकी खेत रो एक एक भाग जो है आँखें मखर निकल जाए जन ध्यान भी पड़ जाए कि कठे काई हो रही है, कठे कोई जो है कीट पतंगों तो कोनी लगड़ो, कठे कोई दूसरों तो नुकसान तो कौन हो रही हो, खेत में कोई बड़ो बदलाव है तो सगड़ो ध्यान में आ जाए और तो सगड़ो करनो जरूरी हो जाए।
5: बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और है, जब आप इन प्रकार रहे काम करा तो बीसू आप हर तरह की जड़ी बूटी है बी गए संपर्क में भी आप आया करा। तो खैर बातचीत तो आप आगे और भी करांगा भरत भाई।
4: बिल्कुल।
5: और अब देखो थार कोथड़े में कोई दूसरो गीत संगीत। लेकिन मैं एक चीज सोचूं कि आप गीत संगीत को आनंद तो अभी लियो ही हो, कोई और थोड़ी सी कोई बातचीत आप और कर लिया तो।
4: देखो बातचीत तो हुए नहीं तो फिर तो कहू ही कहीं, पर आपारे एक क्षेत्र में सगड़ो बढ़िया बातचीत बा हुआ जबकि गवार से संबंधित हुए, मूंगफली से संबंधित हुए या फिर यहाँ रोग से संबंधित हुए, यहाँ प्रबंधन से संबंधित है, तो
6: आनंद आवे। और इन मुजब ही आज जगह है चौपाल रामायण एक काम री जानकारी है, गंवार और मूंगफली में लागण वाला मुख्य रोग और ब्यारो उचित प्रबंधन। और जानकारी आपन दे रहा है डॉक्टर भंवर देवी सिंह नाथावत और यहाँ से बातचीत कर रहा है संदीप कुमार पारिक। प्रस्तुति है रेवंत राम लेघारी और संयोजन श्री अमित सिंह री। आवाज में सुनो सा।
5: अब जो को वगत आ रही है, मौसम जो को है बिंग माँ आप अठे जगह खेती बाड़ी से जुड़ेड़ा किसान लोग हाँ वह मूंगफली और ग्वार की जो की फसल है बा लेना में खास रुझान रखा करे। लेकिन कोई भी अच्छी फसल जद ले जाए जद बिंग बारह में पूरी जानकारी करके पूरी समझ सु जे आप फसल उत्पादन लेवा तो अपनो फसल उत्पादन जो कह वो अच्छो भी हुए और खेती की लागत जो की है वह भी कम होया करे। तो अच्छी फसल लेने के लिए कौन कौन सी बातों को आपने ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी इन प्रकार की चीजें हैं जका सु थोड़ा सो बचाव रखे आपने भी खेत से ज्यादा उत्पादन जो को है वो ले सका। सगली बातों की जानकारी के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित करो है डॉक्टर भंवर देवी सिंह नाथावत जी ने। आप सहायक आचार्य हैं कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में। डॉक्टर साहब राम राम।
7: राम राम सा।
5: डॉक्टर साहब आपने इन इलाका में जका भाई लोग मूंगफली या ग्वार की फसल बाणी छावे तो सो पहलो काम तो देखो खेत की तैयारी जिकी है आपने अच्छी करनी चाहिए। लेकिन खेत की तैयारी करया पछे जब आप बीजाण करा तो बीज जो को है वो आपनो अच्छो होना चाहिए, उन्नत किस्म रो होना चाहिए। तो पहले तो आप मानिया बताओ कि ग्वार और मूंगफली को उन्नत किस्म रो बीज है कौन कौन सी किस्म है भी थोड़ी सी जानकारी दो।
7: देखो किसान भैया आप अगर बात करा कि ग्वार और मूंगफली की उन्नत किस्म कौन कौन सी है तो उन्नत किस्म में बात करा तो ग्वार की जो उन्नत किस्म है वह तीन तरीकों है कि एक तो दानेदार के दाना के रूप में उपयोग लेबा के लिए या फिर चारा के लिए आप उपयोग ले रहे हैं या आप हरी फलिया के लिए उपयोग में ले रहे हैं। तो दाना के लिए बात करा तो मरु ग्वार है और RGC 986 है, अगेती ग्वार 111 है, RGC 197 है, RGC 417 है। और हरी फली अगर अपन लेनी है तो आप IC 1388 और गोमा मंजरी, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नवबहार ए घणीकरी किस्म है जिकी आप उत्पादन ग्वार को बढ़ा सका। और हरा चारा के लिए बात करा तो हरा चारा में आप HFG 119 है, HFG 156 है, बुंदेल ग्वार 2 है, बुंदेल ग्वार 3 है, ये कुछ किस्म है जिके आप उत्पादन बढ़ा सका। मूंगफली के बारे में बात करा तो RG 510 वैरायटी जो किस्म है बड़ी फेमस है, बहुत अच्छो उत्पादन दे। बाकी HNG 123 है, HNG 69 है, HNG 10 है, ये कुछ मुख्य किस्म है जो उत्पादन बढ़ा सका। अगर आप बात करा कि कम अवधि में तैयार होने वाली मूंगफली की फसल कौन सी है तो अगर 110 दिन में पककर तैयार हो जाए बा है TJ 37A का नामू मूंगफली की किस्म है जिन्हें आप अपना बीजान कर उत्पादन पा सका और समय पर अगली फसल गेहूं की या जो भी आप करबो चाहवा बा कर सका।
5: तो ए तो देखो सा आप मूंगफली और ग्वार की उन्नत किस्म जकी है बांग बारे में जानकारी दी। अब दोनों फसलों के बारे में एक एक करके आप बातचीत करा तो सौ पहली मैं बात करूँ आपसे ग्वार के बारे में। तो ग्वार में आप देखा करा कि एक अंगमारी रोग जो को है वो हो जाया करे तो वो जो को रोग हो जाए कई भाई लोग

0: ठीक तरह से पहचान भी कौन पावे। तो इनका मुख्य लक्षण के है और इसू किसान जो को है आपकी फसल ने किया बचा सके, इन पर थोड़ी सी आप जानकारी दो।
1: देखो जीवाणु अंगमारी रोग है वो जीवाणु द्वारा हुआ है। अगर इसका लक्षण पहचानने की अपन बात करा तो इनमें एक जो जीवाणु है वो जेंथोमोनास नामक जीवाणु है, बी द्वारा वो फैले। और रोग अगर अपन पौधों पर बात करें तो धब्बे से अपने को पत्तियों के ऊपर दिखाई दे, और वो छोटे छोटे धब्बे भूरे कलर में और काले कलर में,
0: हाँ, भूरा सा रंगा हो जाए।
1: हाँ। तो वो बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, पत्तियां पीली पड़ जाए और पूरी की पूरी पत्तियां गुवार की आपा देखा तो नीचे पड़ जाए, तो इसका संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर अंत में देखा तो जो आपने गुवार को तनो है भी पर भी और नुकसान पहुंचाए। तो किसान भाइयों इक नियंत्रण के लिए अपन सब उबड़िया काम वो है कि प्रतिरोधी किस्मा बहुत सारी किस्मा यान की है जिनमें वो जीवाणु अंगमारी रोग को नहीं हुआ वह अपन किस्मा लेनी है। अगर फिर भी अपन गुवार बीजान कर रहे हैं तो खेत में कोई अवशेष पिछली फसल को अवशेष है तो उसको भी निकाल के अपन बाहर फेंके, और फसल चक्र अपनाना है अपन। सबसे बड़ो जो कारण है वो फसल चक्र है, तो फसल चक्र अपनान ही अपन करना है। जो आप बुआई करा बीज से पहले बीज को उपचार करना है। स्ट्रेप्रोसाइक्लिन नामक एक रसायन है बिल्कुल 1 ग्राम दवा को 10 लीटर पानी में मिलार आप बीजा ने उपचार कर लिया।
0: तो आप बात तो आप बता दी भी ग्वार में जीवाणु अंगमारी रोग जो है बिंगो नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी बातों को एक आम किसान ने ध्यान रखना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन इन रोग के अलावा एक और रोग हुआ डॉक्टर साहब जकन आप छाछ रोग के नाम से जाना, वो जो रोग हो जाए तो इस फसल ने किया बचाना चाहिए।
1: देखो वो रोग जो हुआ करे है ये मतलब जब फसल पकने की स्थिति में हो तब अगर बहुत ज्यादा नुकसान कौन करे है। प्रारंभिक अवस्था में अगर ये रोग हो जाता है तो अपने को काफी नुकसान देखने को मिलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपने को ध्यान ये रखना है किसान भाइयों कि जैसे ही इसके लक्षण थोड़े दिखाई दे कि पत्तियों पर थोड़ा सा भूरापन आ रहा है, पत्तियां छोटी पड़ रही है, तो अपने को घुलनशील गंधक आता है 0.2% का घोल का छिड़काव करें, या अपन गंधक का चूर्ण जो आम दुकानों पे मिल जाता है 25 किलो प्रति हेक्टेयर की तरफ से अपन इसका बुरकाव कर दें। और अगर खड़ी फसल में बात करें तो एक डिनो के नामक रसायन आता है उसका 1% का घोल अपन बनाएं और आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के अंतराल पर इसका बुरकाव करें तो अपन निश्चित रूप से इस रोग से निजात पा सकते हैं।
0: तो आ तो देखो साहब मोटी मोटी बात जकी है आप ग्वार की फसल में कर ली, लेकिन आपने बीकानेर क्षेत्र के आसपास मूंगफली जकी है व खासी बीजी है, लेकिन मूंगफली में भी कई प्रकार का रोग जका हो जाए करे, बंग बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दो।
1: देखो मूंगफली किसान भाई अपन मूंगफली के बारे में बात करें तो मूंगफली की सब बड़ी जो समस्या है या रोग है जो वो कॉलर रोट है जिन्हें आप आम भाषा में या लोकल भाषा में काली जड़ रोग क्या। काली जड़ रोग एक एस्परजिलस नामक एक कवक के द्वारा हुआ है, वो कई बार नुकसान 40-50% मतलब कि आधी मूंगफली इससे खराब हो जाए। ये दो स्थिति में इसके लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, एक तो जमीन से निकलने से पहले ही ये अंदर ही पौधे मतलब जो बीज है वो गल जाता है,
0: गलन लग जाता
1: है। और उसके बाद होता है कि जैसे ही जमीन से निकल रहा है निकलते निकलते ही 10-12 दिन का जो पौधा होता है उसी समय वो मुरझा जाता है, काला पड़ जाता है, चारों तरफ ब्लैक कलर की काली कलर की फंगस आ जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो केवल मूंगफली के 30 दिन जब बिजाई से लेके 30 दिन तक जो नुकसान होता है वो काली जड़ रोग से होता है जिसको अपन कॉलर रोट कहते हैं।
0: 30 दिन जका है बे खास महत्वपूर्ण हो।
1: और इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके नियंत्रण के लिए अपन जैविक उपचार करें।
0: जैविक उपचार जगह बे महत्वपूर्ण हो
1: जी, महत्वपूर्ण ये तरीका है कि जैविक उपचार से अपन जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो भी मूंगफली भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बहुत मूंगफली का बीकानेर या इस क्षेत्र में जो मूंगफली ज्यादा हो रही है उसमें रसायन का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है।
0: भाई डॉक्टर साहब आप बात तो थे बिल्कुल साची कही है कि रासायनिक जो को उपयोग जो को है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं
1: जी। फली में जो कि सब बड़ी समस्या जो काली जड़ की है बिको उपचार जैविक उपचार ये तरीका है कि अपन कोई भी छायादार स्थान है या आप कह सका कि कोई पेड़ है या फिर कोई टिन शेट है बिके नीचे आप एक अच्छो सो गड्ढो कर लिया 2 फीट को जिसमें 400 किलो अंदाजन गोबर की खाद आ सके, और इस 400 किलो गोबर की खाद में 4 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम पाउडर आवे जो नॉर्मली सब दुकानों पर मिल जाए करे, बिना आपने मिक्सअप कर और थोड़ा 1-2 बाल्टी पानी डाल और उसने आपा जूट की या जो आपा बोरी काम में लिया करा ढक दिया और थोड़ा सो पानी डाल दिया और 15 दिन तक आपने बिन पेक राखनो जिससे कि जो आपा ट्राइकोडर्मा फंगस डालिए बा अपनो मल्टीप्लीकेशन बढ़ाव भी का मायने कर ली। जब आपा मूंगफली की बिजाई करा भी के 1 दिन पहली या जिस दिन बिजाई करा

0: दिन आप अभी ने छिड़काव कर दिया तो वो एक रामबाण को काम आपने काली जड़ के लिए कह रही। आपा जब बिजाई कर दिया तो वो 30 दिन तक अपनो इफेक्ट दिखाई। जो कि आ फंगस है ट्राइकोडर्मा व दूसरी फंगस ने खाई और आपा ने अल्टीमेटम इको बहुत बड़ो फायदो मिली।
1: भी आ बात तो आप बता दी इन रोग के बारे में, कॉलर रोड जो है जड़ गलन, लेकिन कई बार आप देखा कि मूंगफली में सो ज्यादा समस्या जेकी किसान ना आवे वो रोग है टिक्का रोग।
0: जी
1: तो वो जो को टिक्का रोग है इनके बारे में बातचीत तो देखो घनी हुए, पर पूरी जागरूकता जेकी है नी वह अभी भी कोनी हुई डी। तो इनके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दो कि ईसू अपन किया बचनो है के इनका लक्षण हुआ है।
0: देखो किसान भाइयों, टिक्का रोग की बात करा तो टिक्का रोग पत्तिया पर दिखाई दे अपने, बहुत भूरा भूरा कलर का धब्बा हो है और वह धब्बा जगह सगड़ा एक जगह मिल जाए जना एक बहुत बड़ो रूप ले ले और बहुत सारो नुकसान। जब पत्तिया पर धब्बा हो जाए तो जड़ा तक कोई चीज पहुंच कौन सके, जैसे प्रकाश की बात करा बात जड़ा तक जानी चाहिए। तो इसके लिए अपना अच्छो इलाज वो ये कि एक मेनकोजेब नाम का रसायन आता है, कवकनाशी आता है, बिना आपा अच्छी तरह 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला दिया। अगर किसान भाइयों ढोलकी की बात करा तो जो 15 लीटर की ढोलकी आती है उसमें आपा 30 ग्राम मेनकोजेब मिला दें और उसमें कोई भी चिपचिपो पदार्थ जो सस्तो है जहाँ शैम्पू की पूड़ी मिला दी या तो बिसु कहे कि वो पत्तिया पर चिपक सी और अंततः भी फंगस ने खत्म कर सी। तो बहुत अच्छो अपन फायदों सी।
1: तो आप बात तो आप बता दी टिक्का रोग के बारे में भी।
0: जी
1: अब एक चीज और भी है, बा आ है कि कई बार किसान के समस्या हो जाए मूंगफली जिकी है बा पीली पड़न लग जाए। अब किसान एक आम किसान जुको है वो कौन समझे भी वो रोग है या कोई दूसरी चीज है। तो आज की चीज है या पीलोपन हो जाए मूंगफली में इनको के कारण है, और जो हो जाए तो वो रोग क्या अलग है और इनको उपाय क्या है, इन पर थोड़ी सी आप जानकारी दो।
0: देखो किसान भाइयों, अगर आप मूंगफली में पीलापन की बात करा तो पीलापन मुख्यतः अपने 3 प्रकार हुआ है, 3 कारणों पीलापन हुआ है। एक तो हुआ है जब बरसात को पानी खेत में इकट्ठा हो जाए, एक जद हुआ है जब आपने जो कि मृदा है बा मुरुड़ की मृदा है जद वो पीलोपन हुआ है, और दूसरा हुआ है फेरस तत्व हुआ है बिकी कमी के कारण पीलापन हुआ है। तो 3 ये मुख्य कारण है। और चौथा मुख्य कारण है अगर एक ही खेत में आप बार बार मूंगफली की खेती करा तो पीलापन निश्चित रूप से होबा को कारण रहे। तो इस जो फेरस तत्व की मैं बात करा, लोहा तत्व की कमी के कारण पीलापन हो है, तो अपन को 75 ग्राम फेरस सल्फेट जिन्हें आम भाषा में आपा हरा कशिश के वहाँ वो और 15 ग्राम साइट्रिक एसिड एक ढोलकी जो 15 लीटर की हो भी मैं मिला के आपा स्प्रे करा और आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन का अंतराल पर अगर आपा वापस स्प्रे करा तो आपा ने निश्चित रूप से पीलापन है वो खत्म हो जी और जो अपनी दूसरी मूंगफली है जो हरी दिखाई दे रही है उसके बराबर आपा ने वह दिखाई दी।
1: तो आप बात आप बहुत बढ़िया बताए कि हल्को पीलोपन जो को आपने मूंगफली में दिखाई देवे तो वो लो तत्व की कमी के कारण दिखाई
0: कमी
1: दे,
0: के
1: और इनके
0: कारण
1: लिए जो कि आप बात बताई इनको इस उपयोग जो वो आपने करना चाहिए। अच्छा, अभी एक सामान्य तौर पर एक किसान के लिए आप के राय दोगा कि ग्वार और मूंगफली की उन्नत खेती जी के बाद क्या करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान भाइयों, आपा बात करा ग्वार और मूंगफली की बिजाई को समय जो है वो मई और जून को महीनो है, तो इमा आपा ने सब मोटी चीज ध्यान रखनी है कि आपा उन्नत किस्म को बीज काम में लिया जिसमें बहुत सारी उन्नत प्रजातियां वह गवार की और मूंगफली की बा अपन काम में लेनी चाहिए। बीज की मात्रा संतुलित होनी चाहिए कि ना आपा ज़्यादा डाला और ना आपा कम डाला। बीज उपचार बहुत अधिक आवश्यक है अपन के कि बीज उपचार करने बहुत सारी बीमारियां है जो बीज जनित बीमारियां है वह अपन निजात मिल जाए, तो बीज उपचार करबो बहुत अधिक आवश्यक है। बिजाई को समय है जो फसल को बिजाई को समय है वो भी एकदम उपयुक्त होना चाहिए कि जून का पहला सप्ताह में है या दूसरा सप्ताह में अपन बिजाई करनी है, या बरसात जब आ रही है तो अपन ग्वार की बिजाई करनी है मूंगफली की बिजाई करनी है बिको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। फिर है खाद और उर्वरक की मात्रा, इनमें भी संतुलित मात्रा में अपन खाद और उर्वरक आप 5 मुख्य बातों को ध्यान रखता हुआ अगर आप खेती करा तो अपन बहुत अच्छो मुनाफो और बहुत अच्छी खेती अपन मिल सके।
1: तो ग्वार और मूंगफली फसल में लागण आ रहा मुख्य रोग और बारो उचित प्रबंधन, इन मुजब जानकारी दे रहा है कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर रा सहायक आचार्य डॉक्टर भवर देवी सिंह नाथावजी। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में पधारे और किसान बहना और भाइयों ने इतनी फूटी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जानकारी सुनी गंवार और मूंगफली में मैंने लगन वाला मुख्य रोग और बेरे उचित प्रबंधन रे मुजब जानकारी दे रहा है डॉक्टर भंवर देवी सिंह नाथावत जी और यहाँ बात

निश्चित करी ही संदीप कुमार पारिक, प्रस्तुति ही रेवंत राम लेघारी और संयोजन श्री अमित सिंह। और अब देखो देवा घणो घणो धन्यवाद डॉक्टर भंवर देवी सिंह जी ने कि आप चौपाल में पधारिया और महत्वपूर्ण जानकारी दी। पर धन्यवाद जो है सुखो को देवा सा गीत संगीत रे रूप में देवा तो निजर करा एक गीतर लो कालूराम प्रजापति रे आवाज में झूठणिया।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: तो भरत भाई है तो हाथ संदेश और संदेश में पहली कालू राम प्रजापति रुगैडो आप बहुत ही मीठो सो गीत सुनायो। और अब देखो कार्यक्रम में आगे बातचीत करा तो कह रहे कि पहला सुख निरोगी काया। अब आ निरोगी काया तो देखो भरत भाई सगड़ा कोई चावे और इनके लिए आप आपके हिसाब से जतन जका है बे भी कराया करे, कोई खान पान पर ध्यान दे, कोई सुबह जल्दी उठने पर ध्यान दे, पर आज सगड़ी चीजा के सागे सागे एक चीज की बहुत ही महत्वपूर्ण है बा आ है कि जठे भी आपा बसा जठे भी आपा रवा बठे आस पास साफ सफाई जकी है बा होनी घनी जरूरी है।
2: बिल्कुल, और साफ सफाई वास्ते सगड़ों जरूरी चीज आ है कि दो चीजा रो जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी खाने पीने की सामग्री वे एक मेणियर थैली वे बिना नाली रमाइने नहीं जावण दो, इसो जतन करनो है। और दूसरो शौचालय जको है बिरो प्रयोग करनो है, खुले रमाइने शौच को नहीं करनो है। ए दो बड़ा काम आपा कर लिया तो समझ लो आधी सफाई आपा कर ली।
1: बिल्कुल सही बात है। और कई बार आप यहाँ देखा कि स्वच्छ भारत मिशन जो को है इन उद्देश्य केवल शौचालय निर्माण करना है ऐडी बात को नहीं, इनके पीछे जो की सोच आ है कि आपने जगह गांव है वह बिल्कुल साफ सुथरा रहे। जब आप जिक्र करो कि आजकल जगह मैनिया ठूंगा जगह है वे नाली में पड़ा रहे, अब नाली में पड़ा रहे जब नाली हो जाए जाम जगह सु फिर के है कि पूरो कादो जो को है गांव की गलिया में हो जावे। तो इस तरफ अपन ध्यान देना क्योंकि स्वच्छ रहने स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि माखी मच्छर जगह वह नहीं बन पाए।
2: बिल्कुल,
1: फिर देखो आपने गांव में तो मच्छर डांस है होता ही कोनी मत है, अब होने लग गया क्यों धीरे धीरे जिकी है व्यवस्था बढ़ी है लेकिन व्यवस्था के साथ साथ थोड़ा जीवन स्तर में ऊंचे उठाने के लिए जिकी छोटी छोटी बातें हैं बंग कानी आपने ध्यान को नहीं दिया। अब पानी आयो तो पानी के साथ साथ खादो भी आयो, अब खादो आयो तो फिर माखी मच्छर भी होया। तो आंसू निजात पाने के लिए जरूरी है कि आपने जिकी बाण जकी है नी बाण मतलब आदत जकी है बम सुधार करने की जरूरत है। तो जठे भी आप रहा बट साफ सफाई रखा। और एक चीज और है साफ सफाई के लिए आपा छोटा जगह टाबर है बने भी प्रेरित करा भी आपन तो किन बतायो को नहीं हो, अब आपा ने थोड़ा सुचेत हो लेकिन आने वाली पीढ़ी जकी है बा भी साफ सफाई के प्रति जागरूक हो इन चीज को जो महत्व है बिना समझे इनके लिए जरूरी है कि एक जागरूकता जकी है बा आपने गांव में होनी चाहिए।
2: बिल्कुल होनी चाहिए। और बात तो घनी फूटरी करी पर अब देखो भाई लोग अड़ी खराक रिया है एक गीतड़ वास्ते तो निजर करा सा फूटरो गीतड़ो गणपत लाल डांगरी आवाज में।

0: संदीप भाई, गणपत लाल डांगी और साथियों आवाज़ मैंने गीत अड़लो सुनियो। और अब तो देखो एक बात है जो को संदेश बहुत जरूरी है कि आने वाली बिरखा जकी है मेरी एक एक बूंद रो संग्रह करने इस वास्ते ना सिर्फ खुद ने तैयारी करनी है बल्कि दूसरे ने चेतना भी चकानी।
1: बिल्कुल, एक एक टोपो जो को है वो बर्बाद नहीं जानो चाहिए और एक एक क्षण जो को है बिंगो भी आपने ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखो ना सिर्फ खेत्र में ने तालाब फार्म जो भी पौंड पोखर जो को है बारो ध्यान रखना है, घर में भी जो है बिरखा जल पूरा संग्रहित हुए इरी व्यवस्था रो ध्यान रखना है। और अब तो घड़ी इशारो कर रही है कि बिदा लेने रो वक्त आ गयो है, तो लेवा सा सीख और देव सा सीख आपरे हेतड़े भरत कुमार जाजड़ा और
1: संदीप पारिक ने मोकला मोकला
0: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय संध्या के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं इंद्रजीत छंगाणी के स्वर में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में, आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है आपकी कसम।

यह आवाज थी मन्ना डे की और फिल्म का नाम था मदर इंडिया। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था सरस्वती चंद्र। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं एसडी बर्मन का संगीतबद्ध और नीरज का लिखा गीत। फिल्म का नाम है शर्मिली और आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था हीरा पन्ना। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अंत में सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम है दूल्हा दुल्हन।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सांगीदान दमामी और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

गायत्री सोलंकी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से

0: लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित

0: होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के

0: इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes

यह आवाज थी महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम था धुंध। फिल्म संगीत किस कार्यक्रम में, आइए अब सुनते हैं फिल्म आपकी कसम का यह गीत, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का है।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म भीगी पलकें का ये गीत।

महेंद्र कपूर और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था हमराज। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

0: बदलवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बदलवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बदलवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: यह आवाज थी मन्ना डे और साथियों की। रामपुर का लक्ष्मण, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का है।
1: hmm. Hmm.

अभी आपने सुना गीत, फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आई अंत में सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है आवाज महेंद्र कपूर की है और फिल्म का नाम है जिंदगी और मौत।

0: महेंद्र कपूर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के प्रस्तुत है शास्त्र।
1: हम आकाशवाणी

सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का

다들 그때 다 된다 다

Then nag again, then not that. Then

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mrudangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mrudangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mrudangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein unhone vikhyat mrudangavidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आपने तबला वादन सुना। कलाकार थे पंडित सुधीर पांडे।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और

0: राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honoured with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Visit. Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora.